ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।

इस मात्र वंदना को सुनने के बाद आइए अब सुनते हैं वाणी जयराम और दिनकर कैनकनी की आवाज़ों में ये भजन।

0: अभी आप पुरुषोत्तम दास जलोटा की आवाज़ में ये भजन सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 5:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें स्वच्छ खेती के संदर्भ में। स्वच्छ खेती से अभिप्राय है खेती खरपतवारों से मुक्त हो। खेत में किसी भी अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहा जाता है, अतः स्वच्छ खेती करने से खेत खरपतवार मुक्त रहता है। खरपतवारों के पैदा हो जाने से फसल में हानि होती है। इनके द्वारा किए जाने वाली हानि मनुष्य एवं जानवरों दोनों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हो सकती है। प्रत्यक्ष रूप से खरपतवारों की उपस्थिति से जो मुख्य प्रभाव खेती पर पड़ता है वो इनके पौधों व लगाई गई फसल के पौधों के मध्य स्थान, नमी व पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में होता है। इसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, खरपतवार फसलों के रोगों व कीड़ों के एकांतर परपोषी का कार्य भी करते हैं। इनकी उपस्थिति से फसल रोगों व फसल के

0: हानिकारक कीड़ों को बढ़ावा मिलता है, जो कि उपजाई जाने वाली फसल पर बुरा प्रभाव डालकर उत्पादन पर परोक्ष रूप से भी अपना प्रभाव डालते हैं। किसान भाइयों, कुछ खरपतवार अपनी जड़ों द्वारा विषैले रासायनिक तत्वों का भी स्राव करते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। कुछ खरपतवार पशुधन के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ एक खरपतवारों के उपभोग द्वारा गाय भैंसों के दूध में दुर्गंध भी आ जाती है। यही नहीं, खरपतवार फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस एवं सूत्रकृमि आदि के परपोषी का भी कार्य करते हैं। कुछ एक खरपतवार परागकणों को बहुतायत में उत्पन्न करते हैं, जो कि एलर्जी व अस्थमा जैसे रोगों को बढ़ावा देते हैं। कुछ जल के खरपतवार मच्छरों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। इतना ही नहीं, खरपतवारों की उपस्थिति द्वारा फसलों में हानि के अलावा खेत अव्यवस्थित व भद्दे दिखाई देते हैं। अतः स्वच्छ खेती खरपतवार नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। स्वच्छ खेती के लिए खेत की मेड़ें साफ रहें, उनमें कोई घास इत्यादि ना उगने पाएं। धान की फसल लेते समय खेत की मेड़ों को मिट्टी से पोत लें। चूंकि बीज ही खरपतवारों को बढ़ावा देने का मुख्य स्रोत है, अतः हमेशा साफ सुथरे खरपतवार मुक्त बीजों का ही प्रयोग करें। इसके लिए आवश्यक है कि सिर्फ प्रमाणित बीज ही खरीदे जाएं, क्योंकि वे खरपतवारों के बीजों से मुक्त होते हैं। अच्छी तरह से बिना सड़ी खाद में भी खरपतवारों के बीजों के मिले रहने से इनके फैलने का भय रहता है। अतः पूर्णतः सड़ी खाद या जैव पदार्थों का ही प्रयोग करना चाहिए। फसल पौध क्षेत्र को साफ व खरपतवार मुक्त रखें, उसमें खरपतवारों को बिल्कुल भी ना उगने दिया जाए। समय समय पर खेत की मेड़ों व चार दीवारी आदि को खरपतवारों से मुक्त रखें। स्वच्छ खेती के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि फसल कटाई के बाद पुआल को खेत में कभी न छोड़ें। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से भी खरपतवार की समस्या से निदान मिलता है। पशुओं को खरपतवार ग्रस्त क्षेत्रों में चरने से रोकना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा भी खरपतवारों के प्रकोप में वृद्धि होती है। कृषि यंत्रों जैसे कि हल आदि के प्रयोग के बाद सावधानी से इन्हें साफ कर लें। इस प्रकार स्वच्छ खेती का लक्ष्य खरपतवारों के प्रजनन को रोककर उनके बीजों को ना बनने देना, साथ ही उनके प्रकीर्णन को रोकना है। खरपतवार ग्रस्त स्थानों का बीज कभी भी प्रयोग में ना लाएं। किसान भाइयों, हालांकि स्वच्छ खेती करने से फसल पैदा करने की लागत कुछ बढ़ जाती है, पर यह खरपतवारों के प्रजनन फलस्वरूप उनके बीज बनाने व बीजों के प्रकीर्णन एवं उनके बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित।

0: करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी

0: खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Subhendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of the Home Minister Amit Shah yesterday. Mr. Shah, who presided over the meeting, said that all the proposals were received in the favour of Subhendu Adhikari. Following his election as the BJP Legislature Party leader, Mr. Adhikari met West Bengal Governor R.N. Ravi and staked claim to form the first BJP-led government in the state. The BJP registered a historic victory in assembly elections, ending TMC's 15-year rule. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. Reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician once again met the governor yesterday and stated

यान कल 10 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। और अब सुनिए कल रविवार 10 तारीख को जाने वाले जलयानों के बारे में। सिंधु जलयान लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रविवार 10 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल रविवार 10 तारीख को प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानीचंगा कल 10 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 10 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी हडवे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल रविवार 10 तारीख को दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 10 तारीख को दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी नॉर्थ पैसेज कल 10 तारीख को दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। और एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 10 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान अगले दिन 11 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

0: अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। स्वीकार करें अनीता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, क्या आपने खुले आसमान में पंछी को पंख पसार कर उड़ता हुआ देखा है? क्या कभी आपका मन नहीं किया कि हम भी इन पंछियों की तरह होते, आजाद और बेफिक्रे, जिसे किसी की परवाह नहीं, मंजिल का पता नहीं, बस मन जिधर चले वहीं तक उड़ान भरते जाओ, उड़ते जाओ।

श्रोताओं, प्रकृति की गोद में जब हम नजर डालते हैं तो एक प्यारा सा दृश्य अक्सर दिल को छू जाता है। दो पंछी अपनी चोंच में छोटे छोटे तिनके लिए एक नया घर बनाने की ओर बढ़ते हुए। श्रोताओं, इन पंछियों से हम इंसानों को यह सीख मिलती है, जैसे पंछी मिलकर अपना आशियाना बनाते हैं, वैसे ही हम इंसान भी अपने रिश्तों को प्यार, विश्वास और छोटे छोटे प्रयासों से मजबूत बनाते हैं। हर तिनका एक उम्मीद है, हर उड़ान एक नया सपना और हर साथ एक नई शुरुआत।

श्रोताओं, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि ढेर सारी खुशियाँ आपके दामन में आ गिरी हो और आप खुशी से झूम उठते हैं, खुशी से फूले नहीं समाते और आपका मन भी झूम झूम कर कहता है।

0: तो श्रोताओं, इंद्रधनुष कार्यक्रम के अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपसे पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी अनीता। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 233वीं कड़ी।

भरत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें।

अभी आप रामचरितमानस गान की 233वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, वतन के गीत कार्यक्रम के तहत लीजिए अब सुनिए कुछ देश गान।

अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा 7:05 पर। सवेरे 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि आप इसी समय विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो डॉक्टर 7:30 पर, जिसमें विषय रहेगा मौसमी बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा। विशेषज्ञ होंगी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन कौरा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर कलाकार होंगे राधा सलूजा, रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। सवेरे 9 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर ई गायत्री का कर्नाटक शैली में वीणा वादन आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम कशिश का लुत्फ उठाइए सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। गीत अतीत कार्यक्रम का आनंद लीजिए 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में श्रोता कुछ गीत सुन पाएंगे। मलयालम कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 12

बजकर 30 मिनट पर। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकारा होंगी कमलिनी मल्होत्रा। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम 1:30 पर। और दोपहर बाद 2:30 मौसम की जानकारी के बाद हमारे प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक, और 3:30 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप कुछ गीत सुन पाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की चौथी कड़ी प्रसारित की जाएगी शाम 4:30 पर। शाम 4:40 पर हम आपको कार्यक्रमों के विवरण से अवगत करवाएंगे। बहारों की शाम फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा शाम 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में सूचनाओं के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। संध्या 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम के तहत 6:30 पर नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता की मिसाल, इस विषय पर श्रीमती मंजित कौर से ली गई भेंटवार्ता आप सुन पाएंगे। 6:45 पर जितेंद्र पाल सिंह की लिखी झलकी सुनिएगा, फाइल गुम हो गई। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं, कुछ फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत कार्यक्रम होगा ऐसा भी होता है, चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान, जबकि रात 9:30 पर आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती, और रात 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन आप सुन पाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 0.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 78% और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:57 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:34। और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सवेरे 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागिनी, जबकि आप इसी समय विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर आप सुन पाएंगे 7:30 पर, जिसमें विषय रहेगा मौसमी बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा। विशेषज्ञ होंगी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन कौरा।

सवेरे 9 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का। फिल्मी गीतों के कार्य

बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम के तहत संध्या 6:30 पर नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता की मिसाल इस विषय पर श्रीमती मंजित कौर से ली गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। संध्या 6:45 पर श्री जितेंद्र पाल सिंह की लिखी झलकी आप सुन पाएंगे, फाइल गुम हो गई। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत कार्यक्रम होगा, ऐसा भी होता है। इसी के साथ ही जनसूचनाएं समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय शहीद द्वीप पर पैरासेलिंग गतिविधियां आयोजित करने जा रहा है। सरकार ने कहा देश भर में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है और धन्नी खाड़ी बांध में जल स्तर घटा। विभाग ने आम जनता से जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में सभी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल R.N. रवि से मुलाकात की और राज्य में पहली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय शहीद द्वीप पर पैरासेलिंग गतिविधियां आयोजित करने जा रहा है। इस संबंध में निदेशालय ने पर्यटन हितधारकों, जल क्रीड़ा और नाव ऑपरेटरों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर विशेष पर्यटन श्रेणी के तहत अवकाश और मनोरंजक जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देना है। निदेशालय ने जल क्रीड़ा दिशा निर्देश 2015 के अनुसार भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा ऑडिट करवाया है। शहीद द्वीप में ये पैरासेलिंग गतिविधियां लक्ष्मणपुर तट और रामनगर

तट पर चलाई जाएंगी। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं, जो द्वीप समूह जल क्रीड़ा दिशा निर्देश 2015 के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय से संपर्क किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमोल बख्शी की पीठ ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालयों को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कल तक राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में अग्नि रोकथाम और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। इस वर्ष अग्नि सुरक्षा सप्ताह का विषय सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज अग्नि रोकथाम के लिए एकजुट है। अभियान का लक्ष्य स्वास्थ्य कर्मियों, विद्यार्थियों और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना, नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। धन्नीखाड़ी बांध में जलस्तर 50 मीटर से नीचे जा चुका है, जिसके कारण अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा नगरपालिका परिषद को आपूर्ति किए जाने वाले जल की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे निपटने के लिए परिषद ने कल रटलैंड द्वीप से जल संग्रहण की वैकल्पिक व्यवस्था प्रारंभ की है। अब तक लगभग 200 टन जल एकत्र कर टैंकरों द्वारा लंबा लाइन जल शोधन संयंत्र तक पहुंचाया गया है, जहां इसके उपचार और वितरण की व्यवस्था की जा रही है। विभाग जल संकट के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है तथा आम जनता से अपील की है कि वे जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें। दक्षिण अंडमान जिले के मत्स्य किसानों, मछुआरों, मत्स्य विक्रेताओं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति जनजाति और महिला लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% तथा अनुसूचित जाति जनजाति और महिला लाभार्थियों को 60% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत खारे पानी एवं मीठे पानी के मत्स्य पालन हैचरी स्थापना, फिश फीड मिल, कोल्ड स्टोरेज सहित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित दस्तावेजों के साथ 18 मई तक सहायक निदेशक मत्स्य दक्षिण अंडमान के जोनल फिशरीज कार्यालय के पते पर आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग की मेल ID DDZFO744101@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 7908568839 पर संपर्क किया जा सकता है। ANTCC के अध्यक्ष TSG भास्कर ने जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने अध्यक्ष पी उमर के आगामी कार्यकाल के सफल तथा जनहितैषी होने की कामना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नया नेतृत्व दक्षिण अंडमान के लोगों के कल्याण और विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करेगा। सरकार ने कहा कि ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का उदाहरण है कि समग्र विकास किस तरह आर्थिक विकास, पारिस्थितिक संरक्षण और सामाजिक समावेश को संतुलित कर सकता है। सरकार ने कहा कि ये परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री और रक्षा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाती है। ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बंदरगाहों की तुलना में विशिष्ट भौगोलिक लाभों के साथ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय

0: ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भी स्थापित करेगी, जिससे भारत का एक प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। पर्यावरण संबंधी गहन जांच और उसके परिणाम स्वरूप लागू सुरक्षा उपायों के कारण ही पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियां प्रदान की गईं। ये स्वीकृतियां न्यायिक जांच में खरी उतरी हैं। इनमें एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 450 मेगावाट क्षमता वाला गैस सौर ऊर्जा संयंत्र और एक नियोजित टाउनशिप शामिल है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। सोमनाथ में आयोजित 11 मई को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के कार्यक्रम के साथ श्री विजयपुरम के मजार पहाड़ स्थित शिव मंदिर में प्रशासन द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार की बड़ी खबर है। इसके अलावा अखबार ने पानी के भीतर सबसे ऊंची मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने के समाचार को सचित्र प्रकाशित किया है। द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा कैंबल बे जाने वाले जहाज के समय सारणी जारी करने के समाचार को अपने पहले पन्ने में जगह दी है। इन्फो इंडिया ने बाराटांग में लंबे समय से चल रहे बिजली संकट को लेकर जन आंदोलन की घोषणा के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने एंटी नारकोटिक्स पुलिस द्वारा 2.033 किलोग्राम गांजा जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के समाचार को अपने पहले पन्ने में सचित्र छापा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय शहीद द्वीप पर पैरासेलिंग गतिविधियां आयोजित करने जा रहा है। सरकार ने कहा देश भर में घरेलू LPG की कोई कमी नहीं है। और धरनी खाड़ी बांध में जलस्तर घटा, विभाग ने आम जनता से जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, वतन में पैदा हुए हर शख्स के मन में उसके लिए एक जज्बा और गर्व का भाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह कहीं ना कहीं अपने देश के लिए कुछ कर सके, उसके लिए काम आ सके। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है।

श्रोताओं, वतन की खुशबू से महकते हैं हम। इसी भूमि पे जन्म लिया है हमने। हमारे दिल में है वो देशभक्ति का जज्बा। हमेशा यही प्यार रहेगा हम में। मिट्टी की खुशबू से महकता है मेरा अरमान। इस देश की शान में बसा है मेरा सम्मान।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोनिंग कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: हेलो डॉक्टर।

0: Hello, Doctor.
1: हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे माता पिता को अपने बच्चों को स्वस्थ रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मौसमी बदलाव संक्रमणों में वृद्धि ला सकते हैं, खासकर बच्चों में जो अधिक संवेदनशील होते हैं। इस दौरान अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करें यह समझना उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ श्रोताओं, आज हम इसी विषय से संबंधित बातें करेंगे। विषय है मौसमी बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा। इस विषय से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन कौरा। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: श्रोताओं, विषय से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 232558, हमारा STD कोड है 031192। नंबर पुनः हम बोल रहे हैं 232558 और STD कोड है 031।

0: 92। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मौसम में बदलाव के कारण बच्चों में आमतौर पर कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं?
1: जी देखिए, मौसम के बदलने से बच्चों पे बड़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रभाव तो पड़ता ही है, ये सभी लोग देखते हैं।
0: जी मैम,
1: इसका कारण ये है कि बच्चों में जो इम्यूनिटी होती है वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है, उनकी इम्यूनिटी डेवलपिंग इम्यूनिटी है। तो इस समय जो है, जैसे जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया या वायरस उत्पन्न होते हैं, तो बच्चे उनको कैच कर लेते हैं।
0: जी,
1: और कई बार जैसे मौसम बदलता है तो एलर्जीज़ भी बहुत बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे हवा में पोलन्स होते हैं, हम नॉर्मली बताते हैं कि पोलन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो उससे बच्चों में एलर्जी या अस्थमा की जो शिकायत होती है तो वो चीज़ ट्रिगर हो सकती है। फिर उसी तरह मानसून के सीज़न में जब बारिश ज़्यादा गिरती है तो बारिश से रिलेटेड जो बीमारियां हैं या पानी इकट्ठा होने से, जैसे डेंगू मलेरिया ये सब फैलते हैं, तो बच्चों का एक्सपोजर उस चीज़ के लिए भी बढ़ जाता है। तो
0: जी
1: इस तरह से भी बच्चों पे अफेक्ट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे तो इतनी सर्दी और गर्मी एक्सट्रीम जैसे नहीं होती, लेकिन मेनलैंड के मौसम में जैसे एक्सट्रीम सर्दियाँ होती हैं तो उसमें बच्चे ज़्यादा इंडोर रहते हैं, तो वो उनका मूड को भी अफेक्ट करता है, देर में सनलाइट निकलती है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वो भी उनके मूड और इमोशनल बैलेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। उसी तरह गर्मी में उनकी एक्टिविटी तो बढ़ जाती है लेकिन डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है बच्चों को।
0: तो मैम, गर्मी और बरसात के मौसम में बच्चों को रोग प्रतिरोग क्षमता क्यों प्रभावित ज़्यादातर होती है?
1: जी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, गर्मी के मौसम में एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर राइज होने के कारण कई तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे हम मोस्ट कॉमन जैसे कि डिहाइड्रेशन ले लें, बच्चे जो हैं बाहर खेलते हैं, अब
0: जी
1: बच्चों
0: जी
1: को आप घर में बैठा के नहीं रख सकते, उनको जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ हैं वो फ्री हैं तो वो खेलते हैं,
0: खेलते
1: और
0: हैं,
1: उस समय जो है कई बार ये ध्यान नहीं देते कि उनको
0: पानी
1: इतना
0: पीना
1: पानी
0: है।
1: पीना
0: जी
1: चाहिए,
0: जी
1: है ना, तरल
0: जी
1: पदार्थ जो ज़्यादा लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब नहीं कंज्यूम करना चाहिए उनको, फ्रूट फ्रूट जूसेस और नॉर्मल पानी या कोकोनट वाटर ये सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जब ये नहीं होता है तो उनको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आते हैं।
0: जी
1: इसके अलावा ज़्यादा गर्मी के टाइम में जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो बाहर का खाना खाने से बच्चों का पेट खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
0: जी जी तो मैम, आपने कहा पानी बच्चों को ज़्यादा पीना है, तो क्या हम उन्हें ORS का घोल पिला सकते हैं घर पर बनाकर ऐसे?
1: जी, आप ORS का घोल घर पे बनाकर भी पिला सकते हो, लेकिन एक WHO का रिकमेंडेशन है, उसकी जो ORS WHO रिकमेंडेड ORS जो है वही देना चाहिए बच्चों में, और उन्हें डिहाइड्रेशन हो या फिर उनको जैसे डायरिया हो, वॉमिटिंग हो रहे हैं या उनको दस्त हो रहे हैं तब देना चाहिए। ऐसे रेगुलर बेसिस पे ORS देने की कोई ज़रूरत नहीं है,
0: अच्छा जी मैम।
1: ठीक है। तो ये ध्यान रखना है पेरेंट्स को कि WHO रिकमेंडेड ORS होना चाहिए, उसमें जो है सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज ये सब की एक फिक्स मात्रा होती है, तो वो होना चाहिए। जैसे कि पहले एक ORS आता था, उस ORS को अब जो है आजकल जो है लो ऑस्मोलैलिटी ORS बोल करके थोड़ा सा उसमें चेंजेस आया है, जिसमें कि सोडियम की मात्रा 75 मिलीओस्मोल पर लीटर होती है, पहले 90 थी। तो ये चीज़ें जो हैं आपको, मतलब डॉक्टर बताएंगे कि आपको कौन सा ORS लेना है
0: जी
1: तो
0: जी
1: वही उनको लेना है।
0: मतलब डॉक्टर के रिकमेंड से
1: जी
0: वो।
1: जी कई बार जो है ORS की तरह ही दिखने वाले बहुत सारे और फ्लूइड्स मार्केट में मिलते हैं, तो वो सब ORS नहीं है, उनका जो कंपोजिशन है वो अलग हो सकता है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है वो अलग हो सकते हैं, तो वो नुकसान भी कर सकते हैं, तो इसीलिए देखकर ही उन्हें लेना है।
0: जी। मैम, इन दिनों बच्चों में ज़्यादातर डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है, तो आप
1: जी
0: उनको क्या, अपनी उनके माता पिता को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: जी अभी गर्मी के सीज़न में काफ़ी डायरिया चल रहा है, तो ऐसा है कि बच्चा जब शुरुआत में बच्चे को दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं और बच्चा एक्टिव है, उसे ज़्यादा बुखार नहीं है, बच्चा ओरली ले पा रहा है, थोड़ा घर का खाना पानी पी पा रहा है, तो आप इसे घर पे भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन आपको जो है जो डेंजर साइंस होते हैं वो जानने की ज़रूरत है।
0: जी मैम,
1: जैसे कि कोई बच्चे का यूरिन आउटपुट कम हो गया हो, है ना, बच्चा सुस्त हो रहा हो, बच्चा माँ का दूध भी नहीं पी रहा है या उसे बहुत तेज़

0: बुखार है
1: जी
0: और डिहाइड्रेशन के कुछ और साइंस भी होते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे चेक करते हैं तो उनका स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है, मतलब हम स्किन ऐसे खींचते हैं तो तुरंत वापस नहीं जाता, वो एक डिहाइड्रेशन देखने का साइन है। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनका ये सिर पे जिसको तालू बोलते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में एंटीरियर फोंटेनली बोलते हैं, तो वो डिप्रेस हो जाता है, दब जाता है, ठीक है, या बच्चे का मुंह पूरा सूख जाता है, या बच्चा शुरुआत में जब कम डिहाइड्रेशन कम मतलब प्रॉब्लम रहती है तो बच्चे मांग मांग कर पानी पीते हैं, लेकिन यही अगर प्रॉब्लम बढ़ जाए तो बच्चा फिर पानी की डिमांड इतना नहीं करता है, तो ये भी जो है डेंजर साइंस है। इन सब सिचुएशंस में बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
1: और अब मानसून का सीज़न बस आने ही वाला है, आ ही चुका है कहीं कहीं पर, तो इस दौरान बच्चों को और कौन कौन सी बीमारियां जो है प्रभावित कर सकती हैं?
0: जी, मॉनसून में ये डायरिया के अलावा जो है और भी बीमारियां हैं, जैसे जो मॉस्किटो से फैलती हैं, क्योंकि बारिश जब आना शुरू होती है तो जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि मच्छरों का ये बढ़ जाती है, तो जिससे जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब बीमारियां फैलती हैं। तो इस सीज़न में बड़ों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आसपास के एरिया को अपना साफ सुथरा रखें, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें, अगर आप कहीं पानी स्टोर भी कर रहे हो तो उसको ढक करके रखे, और गंदा पानी तो जैसे कोई टायर है, पुराना ड्रम है, या कोई पुराने कंटेनर्स पड़े हुए हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, तो वो चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें।
1: मॉनसून में बहुत सारी बीमारियां तो देखने मिलती है, बच्चे उस समय भी कभी कभी बरसात के समय पानी की कमी वो पीते नहीं है, बरसात हो रहा है ठंड के समय वो पीते नहीं है, क्या इस दौरान भी डिहाइड्रेशन की कमी देखने को मिल सकती है बच्चों के?
0: जी, ऐसे इतना डिहाइड्रेशन उस समय नहीं होता, लेकिन हाँ अगर बच्चा बीमार पड़ जाए उसके साथ और वो पहले से ही कम पानी पी रहा है और यदि उसको कुछ बीमारी हो जाती है, तो बीमार होते समय बच्चे अक्सर कम खाते पीते हैं।
1: जी मैम, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, कॉलर लाइन पे हैं। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न रखिए, मैम सुन रही हैं।
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, देखा जाता है बच्चे जैसे स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ कैसे अपना पीने का पानी ठीक से पीते हैं नहीं पीते, पढ़ाई में ध्यान देना पड़ता है और फिर हाफ टाइम में खेलते भी हैं
0: जी।
2: तो बच्चे घर आते हैं, हम देखते हैं कि बच्चों को भी पीने का पानी जब पीना है तो चाहे पसीना आ रहा हो चाहे जितनी मर्जी खेल के आए हैं गर्मी है वो पी लेते हैं, तो उनसे ये कुछ साइड इफेक्ट होने के चांसेस कितने होते हैं? और बच्चे अपने खान पान पे इतना ध्यान नहीं देते और अगर पढ़ाई करनी है तो फिर पढ़ाई में ही लगे जाते हैं, तो बच्चों को किस ढंग से संतुलित आहार खिलाया जाए जो पूरे दिन में उनको ठीक रखे?
0: जी, ये आपने काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा। देखिए, कई बच्चे हम भी रूटीन में देखते हैं जो सुबह जो है अच्छे से नाश्ता करके नहीं जाते, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा स्कूल जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से करके जाए, ठीक है। अगर बहुत हैवी ब्रेकफास्ट भी बच्चा नहीं कर पाता है तो भी आप एक जो भी नॉर्मल घर का खाना है जैसे रोटी हो गया या पराठा हो गया, या आप दूध के साथ कुछ दे सकते हो, सैंडविच वगैरह, तो ये सभी पेरेंट्स को ट्राई करना चाहिए कि बच्चा ब्रेकफास्ट खा के जाए। सिर्फ जो है अगर एक ग्लास दूध पी के बच्चा जा रहा है, या कई बच्चे हम लोग देखते कि कुछ भी खा कर नहीं जाते, सुबह टाइम नहीं रहता है, तो ये प्रैक्टिस सबसे गलत है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को खुद ध्यान नहीं रहता कि हमें पानी भी पीना ही होना है, तो कई बच्चे प्रेयर में मतलब उनको जैसे चक्कर वगैरह आ जाता है, कई बच्चे स्कूल में इतना ध्यान नहीं दे पाते, डिहाइड्रेशन हो जाता है और बीमार फील करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप उनको ब्रेकफास्ट करा के भेजें, फिर आप टिफिन में भी कुछ हेल्दी फूड ही दें, स्नैक्स वगैरह घर का बना हुआ दे सकते हैं, लेकिन रेडीमेड चीज़ें अवॉइड करें। और पानी के लिए उनको बार बार बोलते रहें, बच्चों को याद दिलाना पड़ता है कि बच्चे जो है पानी पिए, जैसे वो स्कूल बस में जा रहे हैं या सुबह घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा पानी आप अपने सामने ही पिला दीजिए, फिर स्कूल पहुंचने के बाद फिर वो थोड़ा पानी पी लें, फिर क्लास के दौरान तो देखिए वो नहीं पी पाएंगे, लेकिन जब उनका ब्रेक होता है तब आप उनको पानी पीना है उनको याद दिलाना है। इसके अलावा वो गेम्स खेल कर आते हैं, उनको बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती है स्कूल में, तब भी जो है उससे पहले उनको पानी पी करके जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए स्कूल में।

0: चीज और भी तो कर सकते हैं कि बच्चों को जो पानी की बोतल देते हैं घर के पानी की बोतल, उसमें हम ग्लूकोज मिला के दें या हम नींबू पानी बना के दें अलग से एक बोतल। और खाने में बच्चे ज्यादातर अपनी इच्छा तो बाजार के खाने में ही दिखाते हैं, तो घर का ऐसा क्या खाना, क्या हम उनको पनीर सुबह नाश्ते में टिफिन बांध के दें, कुछ ऐसी चीजें दें जो जिसको एक हाई प्रोटीन डाइट दी जाए। गर्मियों में हाई प्रोटीन डाइट कितना फायदेमंद है?
1: जी प्रोटीन तो देखिए बच्चों के लिए ज़रूरी है ही, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत एक्टिव रहते हैं तो उनको मसल्स के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। लेकिन बच्चों में ऐसे एज सच नहीं है, एक बैलेंस डाइट आपको देना है। तो जो भी आपका घर का खाना है, आपका ट्रेडिशनल फूड है, आपके यहाँ जो भी यूज़ हो घर में बनता है खाना, बच्चों को भी छोटे से वही खिलाना है आपको। बच्चों को मतलब ये नहीं कि जैसे अभी जैसे बच्चा एक साल का हो गया तो उसको हमेशा ही अलग से बना करके खिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक होने के बाद बच्चा जो है वो सारा खाना खा सकता है जो उसके पेरेंट्स खाते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आप रोटी सब्जी पराठा उपमा इडली डोसा दलिया ये सारी चीज़ें हैं ये आप दे सकते हैं, सैंडविच दे सकते हैं। जल्दी खाना है लेकिन वो न्यूट्रिशियस भी है, उसके अंदर कुछ भी आप वेजिटेबल्स की फिलिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप आलू का सैंडविच देते हो तो उसमें भी आप कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। पनीर आप दे सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर एग खाते हैं तो एग दे सकते हैं बच्चे को, इनफैक्ट छोटे बच्चों को आप रोज एग दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप खाते हैं तो। और ग्लूकोज की आपने जो बात कही, ग्लूकोज एज सच जो है रिकमेंडेड नहीं है बच्चों को आजकल ऐसे, क्योंकि वो सिर्फ ग्लूकोज ही प्रोवाइड करता है। और जब बच्चों को डिहाइड्रेशन होता है तो उनके शरीर में सॉल्ट की कमी भी होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी होता है। तो आपने जो घर का नींबू पानी बोला वो ठीक है, और इसके अलावा आप उनको ORS वगैरह पिला सकते हो, नारियल पानी भी पिला सकते हैं गर्मी के टाइम पे।
2: मैम यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, और एक कॉलर है लाइन पे। हेलो हेलो,
3: नमस्ते बहन जी।
2: जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न रखिए, मैम सुन रही हैं आपको।
3: जी नमस्ते मैम को भी।
1: नमस्ते, बोलिए
3: जी। मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
1: जी जी बोलिए
3: जी। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ, मरीज की सेवा करता हूँ, मेरे यहाँ बच्चे बहुत आते हैं।
1: जी
3: आजकल डायरिया का गर्मी का दिन है,
1: जी
3: हिफाजत बताया जाए जिससे मैं लाभान्वित हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ।
1: जी देखिए डॉक्टर साहब, डायरिया तो अभी काफ़ी चल रहा है, तो आपको वही है कि आप सभी बच्चों को ORS वगैरह तो देते ही होंगे, और डायरिया से रिलेटेड खाना है जैसे उनको ये कई बार देखा गया है कि गांव वगैरह में जो लोग हैं वो बच्चों को जब दस्त लगते तो उनको कुछ खिलाते नहीं हैं उस समय, ये सोचते हैं कि खिलाएंगे तो जो है दस्त और बढ़ जाएंगे। तो उनको आपको यही एडवाइस देना है कि आप उनको थोड़ा थोड़ा करके खिलाते रहें। अगर बच्चे को ORS पीने में भी दिक्कत है तो उसको सिप करके ORS पिलाएं, तब जो है बच्चा उल्टी कम करता है। कई बार लोग क्या करते हैं पूरा ग्लास भर के पिलाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा उसे टॉलरेट नहीं करता। तो उसे आप थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा पिलाएं। और खाने में जो नॉर्मल घर का ही खाना है जैसे खिचड़ी है, दही है, और फ्रूट्स हैं, बनाना हो गया, ये सब आप दे सकते हो उन्हें। लेकिन बच्चे को मतलब केवल जैसे दूध पे रखा है, कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे दस्त में, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो डेंजर साइंस हैं दस्त के, जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चा डिहाइड्रेट लग रहा है, उसका यूरिन कम हो रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, उसके आँख से आंसू नहीं आ रहे हैं, उसका माउथ मुँह उसका ड्राई है, और बच्चा खुद नहीं मांग रहा है पानी, और छोटा बच्चा है उसका तालू जो है धस गया है सिर में, ये सारे डेंजर साइंस है, तब आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि हो सकता है बच्चे को एडमिशन की ज़रूरत हो या उसे IV फ्लूइड्स देना पड़े।
2: जी जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम हम बरसात के समय बात कर रहे थे कि डिहाइड्रेशन की कमी उस समय बच्चों को ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है, तो उस समय ज़्यादातर बरसात के समय बच्चों को सर्दी ज़ुकाम होता है।
1: जी
2: क्योंकि माँ बाप माता पिता उनके सर्दी जुकाम को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उनके लिए ये खतरनाक साबित भी हो सकता है। आप इनके इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमें।
1: जी मौसम बार बार बदलने से बच्चों में सर्दी जुकाम तो आमतौर पर हम लोग देखते ही हैं। देखिए अगर बच्चा बिल्कुल एक्टिव है, उसे तेज बुखार नहीं है, उसे केवल थोड़ी बहुत सर्दी हो रही है, तो आप जो है घर पे ही उसको स्टीम दिला सकते हो, उसे थोड़ा गर्म पानी का सेवन दे सकते हो, नेजल ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, और घरेलू इलाज भी कर सकते हैं, जैसे उनको थोड़ा बहुत ये है गार्गलिंग कराया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चा आपको ठीक नहीं लगता है, दो तीन दिन हो गए हैं बच्चे

0: को खांसी ज्यादा हो रही है, बच्चा ठीक से सो नहीं पा रहा है, ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है, ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, ऐसे कोई भी साइंस है तो आपको तुरंत बच्चे को ले जाकर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है।
1: जी जी
0: क्योंकि कई बार जो है ये वायरल इन्फेक्शन से ही ये सारे होते हैं
1: जी
0: सर्दी
1: जी जी
0: जुकाम, लेकिन क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है तो कई बार वो वायरस जो है उनके चेस्ट तक चले जाते हैं और उनको निमोनिया भी हो जाता है। तो ऐसा कई बार हमने देखा कि उनको ज्यादा दिनों से कफ कोल्ड हो रहा है, अगर प्रॉपर इलाज नहीं मिला तो बच्चों का चेस्ट इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है और उनको एडमिट करने की नौबत आ जाती है।
1: जी मैम, यहाँ पर आपने इम्यूनिटी की बात कही, तो
0: जी
1: कमज़ोर इम्यूनिटी के लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं बच्चों में वैसे?
0: कमज़ोर, देखिए बच्चों की इम्यूनिटी वैसे भी डेवलपिंग इम्यूनिटी है,
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: मैंने आपको बताया, अभी उनको टाइम लगता है, धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है
1: बढ़ती है जी।
0: और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन लगना ख़राब नहीं है, क्योंकि जब ये थोड़े बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शन बच्चों को होते हैं तो हमारी बॉडी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है और एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिससे कि जब दोबारा वो इन्फेक्शन होता है तो बॉडी खुद उनसे फाइट करता है। तो छोटी थोड़ी बहुत भी इन्फेक्शन से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई बच्चा यदि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहा है, उसका वज़न भी कम है अपने एज के अनुसार जितना होना चाहिए, बच्चा एक्टिव नहीं है स्कूल में, ठीक है, और
1: जी
0: ये
1: जी
0: पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, ये सब चीज़ें हैं तो हमें वॉच करने की ज़रूरत है कि उसे क्या दिक्कत है।
1: मैम यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगी, एक कॉलर लाइन पे है। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, आप अपना प्रश्न रखिए, मैम सुन रही हैं आपको।
2: नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते
0: गुड
2: मैम।
0: मॉर्निंग।
2: मेरा सवाल ये है कि जैसे बच्चे खाना खाते हैं अच्छे से फिर भी हेल्दी नहीं हो पाते, तो क्या उनके पेट में कीड़े हो सकते हैं मैम?
0: जी किस एज के बच्चे की बात वैसे आप कर रहे हैं?
2: जैसे मैम 5 साल के भी होते हैं, 10 साल के भी होते हैं बच्चे। और दूसरा सवाल ये है जैसे कि मैम स्कूल में बच्चे जैसे फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं,
0: जी
2: तो क्या ये सही है खाना? क्योंकि मैम बाहर देखा जाता है कि वो कैसे कैसे तरीके से चीजें बनाते हैं,
0: नहीं नहीं
2: सफाई
0: बिल्कुल
2: से
0: भी
2: बनाते हैं
0: फास्ट
2: नहीं
0: फूड का
2: बनाते हैं।
0: सेवन जो है आपको नहीं एनकरेज करना चाहिए ज़्यादा। और फास्ट फूड एक तो वैसे भी मतलब सही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत फैटी चीज़ें और ऑयली भी होता है, वो पुअर हाइजीन से भी बना हुआ होता है, तो वो हर तरह से नुकसानदायक ही है बच्चे के
1: जी
0: लिए।
1: जी
0: तो उनको शुरू से ही एनकरेज नहीं करना चाहिए फास्ट फूड के लिए। जब बच्चा छोटा होता है तो हम जिस तरह से उसको सिखाते हैं वो वैसा ही सीख जाता है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो बच्चे जो है इन चीज़ों के लिए जिद करते हैं। तो उनको शुरू से ही समझाना है और उनको ये सब चीज़ें नहीं लेकर देनी है कि उनको टिफिन में भी फास्ट फूड दे रहे हैं, है ना, या जब भी बाहर गए तो कुछ फास्ट फूड लेना है, तो ये हैबिट डेवलप नहीं करनी है। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा चीज़ आपने जो पूछा कि बच्चे हेल्दी नहीं होते हैं जैसे, तो इस बारे में मैं बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और उनके यही क्वेरी होती है कि हमारा बच्चा सब कुछ खाता है लेकिन फिर भी इसका वेट
1: वेट
0: नहीं बढ़
1: नहीं।
0: रहा है ना। तो
1: जी
0: इसमें मैं कहना चाहूँगी, देखिए जैसे टॉडलर होते हैं, जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं, या समझ लीजिए 5 साल तक के भी बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये दिन भर खेलते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, कैलरी, प्रोटीन, कैल्शियम, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट इनकी बहुत ज़्यादा होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो इसी वजह से ये जो है वेट गेन इतना नहीं कर पाते। लेकिन यदि इनकी हाइट बढ़ रही है और बच्चा एक्टिव रहता है, ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ रहा है,
1: जी जी
0: तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। हर बच्चे का वज़न का एक रेंज होता है, इतने से इतने तक होना चाहिए हर एज के हिसाब से, तो यदि बच्चा आपका उसी रेंज के अंदर है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर बच्चा उस रेंज से बिलो उसका वेट है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि उनको और क्या डाइट दें,
1: जी
0: ठीक है,
1: जी
0: लेकिन मेरा कहना ये है कि बच्चों को घर का बना हुआ जो है हेल्दी
1: हेल्दी
0: डाइट आप
1: डाइट।
0: दें और बच्चे का ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा।
1: जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, क्या मौसम के अनुसार टीकाकरण और विटामिन बच्चों की सुरक्षा में मदद करते हैं?
0: जी हाँ बिल्कुल, विटामिन तो देखिए सभी जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी डेवलपमेंट, तो विटामिन बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं, तो शुरू से ही आप बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देने की आदत करें। कई पेरेंट्स पूछते हैं कि इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हम क्या करें, है ना, तो इम्यूनिटी
1: जी
0: डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अलग से कुछ नहीं देना है, आपको उनको हेल्दी खाना कंज्यूम करने की आदत डालनी है, जो नॉर्मल खाना है उसके अलावा वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का

0: एग आपके फैमिली में लेते हैं तो आप बच्चों को एग जो है रेगुलर बेसिस पे दें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करती हैं।
1: मैम यहाँ पर एक कॉलर लाइन पे है। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार
1: जी, नमस्कार, प्रश्न रखिए, मैम सुन रही हैं आपको।
2: जी। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से
0: जी, बोलिए।
2: जी। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि आजकल गर्मी बढ़ रही है, तो बच्चे के जो है कपड़े हैं किस तरह से पहनने चाहिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि कई बार बच्चे भारी भारी कपड़े भी पहन लेते, तो किस तरह से जो है कपड़े का ध्यान रखना चाहिए बच्चों का।
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो बता नहीं पाते हैं अपनी प्रॉब्लम, लेकिन छोटे बच्चों को भी गर्मी लगती है। तो कई बार क्या है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा कवर करके रखना चाहिए, उनको हमेशा वुलन क्लोथ्स में रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप गर्मी है तो आप बच्चे को कॉटन क्लोथ्स में ही रखें और उसे पूरा ढक कर रखने की, टोपी पहना के रखने की, मोजे वगैरह पहना के रखने की
1: जरूरत
0: ज़रूरत
1: नहीं है।
0: नहीं है।
1: जी जी
0: प्लस आप देख भी सकते हो कि बच्चे को ज़्यादा पसीना आ रहा है, बच्चा अनकंफर्टेबल है, इरिटेट हो रहा है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो गर्मी की वजह से हो सकता है।
1: जी मैम
0: और
1: जी
0: सर्दी
1: जी
0: के मौसम में तो सभी लोग प्रिकॉशन लेते हैं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मियों में ओवर कवरिंग से बच्चे जो है कभी कई बार जो है एनवायरमेंटल हीट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी बच्चों का बढ़ जाता है, तो लोग सोचते हैं कि बुखार हो गया। लेकिन अगर हम उनको सही से कपड़े पहनाते हैं, उनको थोड़ा सा गीले कपड़े से स्पॉन्ज कर देते हैं, तो बच्चे थोड़ी देर में ही नॉर्मल और कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो
1: जी जी
0: एनवायरमेंटल फीवर जो कई बार हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं, तो वो भी बच्चों में देखा जाता है ओवर क्लोदिंग की वजह से। तो
1: जी
0: आपको हल्के कपड़े ही गर्मियों में पहनाने चाहिए।
1: जी जी
2: जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए।
1: जी कॉल करने के
0: धन्यवाद।
1: लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, माता पिता को किन किन लक्षणों पर तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए? जैसे बच्चों को कुछ हो गया, कभी कभी वे घर पर ही रख देते हैं बच्चों को, उनको लगता है नहीं घर पर ही वे ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल सा बुखार है या सर्दी जुकाम है जो भी है।
0: जी देखिए, छोटे बच्चों में बुखार होना तो आम बात है,
1: जी
0: लेकिन ये है कि पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि जब बच्चे को बुखार चढ़ रहा है तो उसका टेम्परेचर नापने की एक तो आदत डालें।
1: जी
0: सभी के पास एक थर्मामीटर होना चाहिए,
1: जी जी
0: क्योंकि हाथ से टच किया हुआ टेम्परेचर ठीक है, आपको आइडिया तो उससे लगता है, लेकिन एग्जैक्ट टेम्परेचर आप नहीं बता सकते। तो थर्मामीटर से टेम्परेचर नापिए, ताकि जब आप डॉक्टर के पास आए तो आप उनको बता सके कि इनको कितना टेम्परेचर आ रहा है, किस समय इनको टेम्परेचर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग फीवर में अलग अलग तरह का टेम्परेचर होता है। जैसे मलेरिया का बुखार अलग तरह का होता है, वो कुछ ड्यूरेशन के बाद रिपीट होता है, और कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिनमें कंटिन्यूअस फीवर आता है,
1: जी
0: तो
1: मैम
0: ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको टेम्परेचर नापना है। सेकेंड, आप जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचते हो, आपको तुरंत जो है बच्चे को स्पॉन्जिंग करनी चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से, ठीक है, जो हम अक्सर सभी पेरेंट्स को बताते हैं, आपको एक टॉवल को नॉर्मल पानी में डिप करना है, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं स्पॉन्जिंग करना होता है
1: नॉर्मल
0: बच्चे को, और ठंड का मौसम है तो आप ल्यूकवार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हो, गर्मी का मौसम है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी यूज़ करिए, और बच्चे को पूरा सिर से लेकर पैर तक उनकी स्पॉन्जिंग करनी
1: जी
0: चाहिए,
1: जी
0: ठीक है। और फिर भी आपको टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से पूछ करके सही डोज दें उन्हें।
1: जी जी
0: कई बार लोग ये बहुत गलती करते हैं कि एक दूसरे से पूछ कर
1: पूछ कर
0: दवाई
1: दवा
0: देते
1: दे
0: हैं,
1: देते हैं। जी जी
0: तो पैरासिटामोल भी देखिए बहुत तरह का आता है, ड्रॉप्स आता है, सस्पेंशन आता है, कई बार कॉम्बिनेशन वाला पैरासिटामोल आता है जिसमें एक दो दवाइयाँ और भी होती हैं, तो हर दवाई हर बच्चे को सूट नहीं होती, तो हर बच्चा एक इंडिविजुअल है, उसको जो उसके वजन के हिसाब से या उसकी बीमारी के हिसाब से दवाई बताई जाए, डॉक्टर बताएंगे, तो आपको वही देना है, किसी
1: जी
0: से पूछ कर दवाई नहीं देनी है।
1: जी जी तो मैम बस अब आप चलते चलते हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी?
0: जी देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप दवाइयाँ जो हैं ऐसे ही लेकर बच्चों को ना दें। ये अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो आप दवाइयों का जो ये है, बच्चे घर में अगर आप रख देते हो तो कई बार बच्चे भी उसे उठाकर पी लेते हैं, तो बहुत
1: जी मैम
0: केयरफुली दवाइयों को रखना है, बच्चों के रीच के बियॉन्ड आपको रखना है, ताकि बच्चे, कई बच्चे कलरफुल दवाइयाँ देखकर अट्रैक्ट होते
1: अट्रैक्ट हो
0: हैं
1: जाते
0: और
1: हैं।
0: पी
1: जी जी
0: लेते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये चीज़ भी ध्यान रखना है। सेकेंड जो है, आपको किसी से पूछ पूछ कर दवाई नहीं देना है, हाँ आप अपने डॉक्टर से या किसी डॉक्टर से ही कंसल्ट करके मेडिसिन दे, और मेडिसिन के जैसा मैंने बताया स्ट्रेंथ का ध्यान रखें, और वो कितने एमजी, कितने एमएल में कितने एमजी की दवाई है, इससे डोजेज डिसाइड होती है बच्चों में,
1: जी जी जी
0: ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और बच्चों के वेट के हिसाब से भी दवाई होती है, अब एक बच्चा 10 किलो का है, एक बच्चा 15 किलो का है, दोनों को

0: सेम दवाई नहीं काम करेगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए वैक्सीन होते हैं, तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज में सभी पेरेंट जो है बच्चों को जहां तक वैक्सीन दिला सकते हैं, जैसे हमने अभी डायरिया की बात की, तो रोटा वायरस डायरिया मोस्ट कॉमन देखा गया है बच्चों में, तो उसका वैक्सीन अवेलेबल है और वो इंजेक्शन भी नहीं है, सिर्फ पिलाने का वैक्सीन है, तो कई लोग उसे भी मिस कर देते हैं। तो ये मैं बोलूंगी कि जो वैक्सीन से बचने वाली बीमारियां हैं अपने बच्चों को वैक्सीन दिलाएं और इससे उनको हेल्प मिलेगी।
1: ओके मैम, तो मैम आप इस कार्यक्रम में आई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सबों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ लेते हैं आपसे विदा, फिर होगी मुलाकात अगले शनिवार इसी वक्त एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय था मौसमी बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा। विशेषज्ञ थी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन कौरा। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सुनीता। तकनीकी सहयोग दिया पीएम हुसैन और बैजू मैथ्यू ने तथा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल

0: के अर्थ दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
0: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है,

0: नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएंगे।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडापड्डी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। यह युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा

0: समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य हुर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमेरिका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि हुर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजर

0: पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून। ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद भी।
1: If driving is art, you are the artist. You don't need a reason to drive. You need a Swift to fall in love with driving. A Swift with the all-new 1.2-liter Z-Series engine for perfect balance of power, comfort and fuel efficiency. With 6 airbags as standard across all variants. Features like Smart Play Pro Plus, rear AC vent and wireless charger. So buckle up. It's time to go Swifting.
2: Get attractive offers up to Rs. 45,000. To know more, visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom. TNC apply.
3: Namaste Kavita. Achha laga ki aap Ayushman Arogya Mandir mein cervical cancer ki jaanch ke liye aayin.
4: Are didi, meri beti ne mujhe protsahit kiya.
3: Aapki beti to bahut samajhdar hai. Beta, tum kitne saal ki ho?
4: Main 14 saal ki hoon.
3: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
4: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
3: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
4: धन्यवाद दीदी।
5: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल यूविन पर रजिस्टर करना मत भूलना।
6: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। इस समय आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की आवाज़ों में ये गीत।

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के कलाकार थे राधा सलोजा, रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म गीतों का कार्यक्रम तेराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं नसीब इस फिल्म के गीत से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, बोल आनंद बख्शी के हैं, वधुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए भंवर। इस फिल्म का ये गीत, इस गीत को सुरों में पिरोया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, बोल आनंद बख्शी के हैं।

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा एवं कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है नास्तिक।

राखी और हथकड़ी, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। मजरू के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

और अब अंत में सुनिए प्रेम रोग, इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को शुरू में पिरोया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको कर्नाटक शैली में गायत्री का वीणा वादन सुनवा रहे हैं। तो आइए पहले सुनते हैं गायत्री का वीणा पर बजाया राग हिंडोलम, जो आदि ताल में निबद्ध है कृति पापानासम शिवम के हैं।

ये था राग हिंडोलम। और अब अंत में सुनिए गायत्री का वीणा पर बजाया राग अबीरी, जो आदि ताल में निबद्ध है, कृति त्यागराजा के हैं।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गायत्री का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश।

पल पल हर कदम पाएंगे हम एक मंजर नया, पल पल हर कदम

श्रोताओं, अभी आपने फरहान अख्तर की आवाज में सुना रॉक ऑन 2 का गीत। गीतकार जावेद अख्तर थे और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

फरहान सैयद, श्रेया घोषाल और राहुल मिश्रा की आवाज में अभी आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म जीनियस से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: Go home. I experienced it too. I

अदनान सामी के संगीत निर्देशन में तैयार, अब सुनिए लकी फिल्म का गीत। इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत अतीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, आवाज मोहम्मद रफी की।

फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी व संगीतकार राहुल देव बर्मन।

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए यह शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है।

आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: and are safe. In IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur today at 7:30 p.m. Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi last night. Chasing a target of 143 runs, Kolkata Knight Riders made 147 runs by only losing 2 wickets in just 14.2 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कमलिनी मल्होत्रा को।

आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश की थी गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड ने। श्रोताओं, आप सब भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपको केवल हमें 9474234000947423400 पर अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गीत के बोल लिखकर भेजने हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश आई है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून की। ये सुनना चाहते हैं धड़कन फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगले गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम पंजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौनसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चौनसोलिया।

श्रोताओं, आशा फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: अमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। भारतের सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ

0: सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से

0: महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण

0: और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है राष्ट्रीय।

कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। यह थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 और 17 सेकंड हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।

श्रोताओं आपको मौसम की जानकारी दे दें। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 MHz पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

श्रोताओं, अभी आपने लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह, मन्ना डे, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ में सुना क्रांति फिल्म का गीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कॉलेज गर्ल से।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला मिन्ये रोक्रे हमांग इंगिरिये तका लमक तेलंगम मीडियम वेव द 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्स रमांग एलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम मनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग। मिन गातलोन इंगिला हराप तरन मिने महवत करेचोग नलक एलहोय मिने कुन बनाम ही एम वी रानी जंगा किरानगर नचु मायबंदा तटिक्लीपुर इप्त काउक्सीन अलांगो चिंगे इद सटकनरो द लाप हु नलग्न फिनिक्स पे ngachawan ने इप द नेट सीन अलांगो चिंगे इद सटकनरो द लाप हु न रांग डिक्लीपुर सक माय

श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की चौथी कड़ी।

हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम और मैं हूं आपका आरजे चेतन। एंग्जायटी इंसान के लिए घातक है। ये मस्तिष्क को चोट पहुंचा दे सकती है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोगों की जिंदगी जैसी हो गई है, उसमें एंग्जायटी का होना बहुत आम बात है। रिश्ते में विश्वास की कमी, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, असुरक्षित महसूस करना, लड़ाई झगड़े, गलत व्यवहार, अनियमितता, समाज से दूर रहना, अपनी ही जिंदगी में लीन रहना, ये सब बेचैनी के कारण है। एंग्जायटी तो हर किसी को होती है, परंतु इसे बीमारी के तौर पर पहचानना मुश्किल है। अगर कोई विशेष नकारात्मक विचार या परेशानी बहुत लंबे वक्त तक बनी रहे और उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने लगे तो ये वाकई खतरनाक है। एंग्जायटी अवसाद, निराशा व दुख से जन्म लेती है। जब हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वह हमारे दुख का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार नजरअंदाज किए जाने पर अवसाद एंग्जायटी का रूप ले सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। यह घबराहट के दौर पैनिक अटैक होते हैं।

एंग्जाइटी के दौर में व्यक्ति को हर समय चिंता, डर व घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी या जी मचलने की समस्या भी महसूस होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो आप साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। जब भी कोई विचार अपने निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे एंग्जाइटी कहते हैं। विचार हमेशा एक निश्चित स्तर तक ही किया जाना चाहिए। सीमा से अधिक विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक कोई भी विचार आपको परेशान न करे तब तक बस सामान्य है, परंतु जब कोई विचार या सोच निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तब यह चिंता का विषय है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। एंग्जाइटी के सामान्य लक्षण ये है दोस्तों: बेवजह की चिंता करना, हृदय गति में बढ़ोतरी होना, छाती में खिंचाव महसूस होना, सांस फूलना, लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बातचीत करने से डरना, लिफ्ट वगैरह में जाने का डर कि वापस नहीं निकल पाएंगे, जुनून की हद तक सफाई करना, बार बार चीजों को सही करते रहना, जीवन से निराश हो जाना, ये सोचने कि आप मरने वाले हैं या कोई आपको मार देगा, पुरानी बातों को याद करके बेचैन होना, मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाना, फालतू विचारों में बढ़ोतरी होना, बिना कारण के बेचैनी महसूस करना, गैर जरूरी चीजों के प्रति बहुत लगाव होना, जल्दी निराश हो जाना, किसी चीज के लिए अनावश्यक आग्रह करना आदि। दोस्तों, इस एंग्जाइटी के कई प्रकार हैं, जैसे सामान्य एंग्जाइटी, अनियंत्रित जुनूनी प्रकार, सामाजिक चिंता प्रकार, डर या फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, घबराहट। डियर फ्रेंड्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट द रीजंस फॉर एंग्जाइटी। ज्यादा चिंता करने लगना, छोटी से छोटी बात को ज्यादा सोचना और ऐसा आपकी जिंदगी में बार बार होना एंग्जाइटी का ही लक्षण है। इसके चलते आप खुद को महत्वपूर्ण कामों को अच्छे से नहीं कर पाते। तनावपूर्ण घटनाएं, कार्य का बोझ, तनाव, अपने किसी प्रिय व्यक्ति का निधन अथवा प्रेमिका से ब्रेकअप जैसी अविश्वसनीय घटनाएं आदि। जिन व्यक्ति के परिवार में मानसिक विकारों से जुड़ी समस्याएं होती रहती है उन्हें चिंता विकार की समस्या जल्दी हो सकती है, जैसे OCD विकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, थायराइड की बीमारी, दमा, डायबिटीज या हृदय रोग आदि। अवसाद से पीड़ित लोग भी एंग्जाइटी की चपेट में आ सकते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा हो उसकी कार्यक्षमता में गिरावट आने लगती है, इससे कामकाज से जुड़ा तनाव बढ़ने लगता है और फिर एंग्जाइटी का जन्म होता है। पीड़ा, गम, मायूसी, उदासी व तकलीफों को भूलने के लिए बहुत से लोग शराब, नशीली दवाएं और दूसरे नशे का सहारा लेने लगते हैं। यकीन मानो, कभी भी ये चीजें एंग्जाइटी का इलाज नहीं हो सकता है। नशे का इस्तेमाल समस्याओं को और बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को पूर्णतः के साथ काम करने की आदत होती है, लेकिन जब यह पूर्णतः की जिद सनक बन जाए तो यह एंग्जाइटी के अधीन आ जाते हैं। यही जिद उन लोगों को बिना वजह की घबराहट और चिंता को जन्म देती है। जब कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसका सहानुभूति तांत्रिक तंत्र बहुत तेज काम करने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और मुंह सूखना शुरू हो जाता है, घबराहट हो जाना, ज्यादा कुछ सोचने पर असहजता और घबराहट होने लगती है, जो कि एंग्जाइटी का ही एक लक्षण है। ये बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे पहले कि ये बड़े, डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जब हमें ज्यादा थकान महसूस होने लगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सामान्य फीलिंग है या किसी चिंता की वजह से हो रहा है। यदि इस थकान के कारण सिरदर्द या घबराहट हो तो ये एंग्जाइटी का एक लक्षण है। ज्यादा चिंता करने से नींद नहीं आती और तनाव बढ़ने लगता है। शोध से पता चला है कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां होती है और चिंता से याददाश्त पर भी असर पड़ता है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, वो बात बात पर गुस्सा

0: और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, जिससे उनके सोशल लाइफ पर असर पड़ता है। मांसपेशियों में तनाव रहने लगता है, व्यक्ति को चिंता के दौर पड़ने लगते हैं, वो खुद को हर जगह असुरक्षित पाता है। एंग्जायटी का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति सही से सो नहीं पाता, नींद पूरी तरीके से नहीं ले पाता है। नींद में सोते हुए गिर जाना या आधी रात में जाग जाना, ये सब भी एंग्जायटी के लक्षण है। एंग्जायटी से पीड़ित लोगों को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और पसीना आने लगता है। जिन लोगों को ज्यादा बेचैनी होती है, वो सामाजिक स्थितियों से डरते रहते हैं। उन्हें समाज में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को लगता है कि समाज उन्हें और उनकी बातों को अहमियत नहीं देती है। एंग्जायटी से पीड़ित इंसान कभी भी संतुष्ट का अनुभव नहीं कर पाता है। उसे सदा दुख का एहसास होता रहता है और वो संतुष्ट जीवन का आनंद लेने में असक्षम होता है। व्यक्ति को चिंता किसी भी चीज से किसी भी समय हो सकती है, लेकिन अगर सही समय पर उसका इलाज न किया जाए तो यह अवसाद का रूप ले सकती है और पीड़ित व्यक्ति को घबराहट और चिंता के दौरे पड़ने लगते हैं। हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, परंतु इस समस्या की गंभीरता को कम नहीं समझना चाहिए। अगर एंग्जायटी के एक भी लक्षण से आप, आपके परिवार का कोई व्यक्ति या जान पहचान का कोई इंसान पीड़ित है, तो सबसे अच्छा यही है कि इलाज के लिए आप किसी अच्छे चिकित्सक, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की मदद लें। एंग्जायटी का ट्रीटमेंट मेडिकेशन और काउंसलिंग से किया जा सकता है। एंग्जायटी की समस्या होने पर उसका हल ये नहीं है कि आप उसे अंतिम स्तर मानकर बैठ जाए। हिम्मत करके समस्या का सामना करें। एक ना एक दिन ये एंग्जायटी आपसे जरूर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का लम्हे कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की चौथी कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। 5:30 पर सुनिए बंगला कार्यक्रम। किसानवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:00। 6:30 पर बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम में नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता की मिसाल श्रीमती मंजीत कौर से की गई भेंट वार्ता आप सुन पाएंगे। झलकी फाइल गुम हो गई का समय रहेगा संध्या 6:45। लेखक होंगे श्री जितेंद्र पाल सिंह। मौसम की जानकारी, जलयानों की यात्रा कार्यक्रम व जनसूचना से आपको अवगत करवाएंगे संध्या 7:15 पर। 7:20 पर आप लुफ्त लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रमों का। युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है रात्रि 8:00। रोजगार समाचार का समय रहेगा रात्रि 8:30। तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। श्रोताओं,

अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर सुनिए एग्री टिप्स, विषय रहेगा पुदीने की खेती। जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर। सवेरे 6:15 पर सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष, विषय रहेगा माँ। रामचरित मानस गान का समय रहेगा सवेरे 6:30। सवेरे 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम देश रागनी। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:30। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे सुधा सिंह, पंकज उदास, कंवल सिद्धू। बाल जगत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 9:00। सवेरे 9:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप अली अहमद हुसैन और साथी का शहनाई वादन सुन पाएंगे। लाइव फोन इन फिल्मी सॉन्ग ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा सवेरे 10:00। जनता जंक्शन कार्यक्रम में आप मदर्स डे स्पेशल विशेष कार्यक्रम सुन पाएंगे, समय रहेगा दिन के 11:00। दिन के 11:30 पर सुनिए कार्यक्रम गजल, फनकार होंगे सलमा आगा, सोमेश कुमार, अशोक खोसला। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:00, जिसमें श्रोता लघु नाटक सुनेंगे। 12:30 पर सुनिए मलयालम कार्यक्रम, जिसमें आप पुराने गीत सुन पाएंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:10, कलाकार होंगे विशु भटनागर। दोपहर 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम घर संसार। श्रोताओं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 5वीं कड़ी आप सुनेंगे शाम 4:30 पर। 4:40 पर आपको अवगत करवाएंगे कार्यक्रमों के विवरण से। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम बहारों की शाम का आनंद लीजिए शाम 4:45 पर। 5:00 तमिल कार्यक्रम, बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। महिलाओं के लिए व्हाट्सएप बेस्ड फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगनी आप सुन पाएंगे संध्या 6:00। संध्या 6:30 पर सुनिए धरती के गीत कार्यक्रम में त्रिपुरा के लोकगीत। देशगान कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:45। 7:15 पर आपको अवगत करवाएंगे मौसम की जानकारी, जलियानों की यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाओं से। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:30, जिसमें आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8:00। रोजगार समाचार का समय रहेगा रात्रि 8:30, तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10:00 रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान श्री डी श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में वीणा वादन आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो थे हमारे आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है ऐसी भी क्या जल्दी है फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है गौरी शंकर शर्मा ने, आवाज है सोनू निगम की।

नवाब आरजू का लिखा व बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया, श्रोताओं सुनिए फिल्म बाली उमर को सलाम का ये गीत आशा भोसले व उदित नारायण की आवाज़ों

श्रोताओं, आपने सुना बाली उमर को सलाम फिल्म का ये गीत आशा भोसले व उदित नारायण की आवाज़ों में। और अब आइए कार्यक्रम के अंत में कुमार सानू व पूर्णिमा की आवाज़ों में सुनिए मासूम फिल्म का ये गीत। गीत रचना आनंद राज आनंद का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम श्रोताओं अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: வணக்கம் அன்பு நேயர்களே, ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் படைக்கும் தமிழமுதம்.

0: এই গানখানির সঙ্গেই শেষ হলো আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান। এর সঙ্গেই শেষ হলো আজকের বাংলা অনুষ্ঠান, প্রচারিত হলো আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে। সঙ্গে ছিলাম আপনাদেরই বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়। আজ তাহলে আসি, নমস্কার, শুভরাত্রি।
1: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को मुस्कान का
1: और शिवानी का
0: नमस्कार। किसान साथियों, चलिए हर रोज की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक नेक विचार के साथ।
1: और हमारा आज का विचार है कि भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है।
0: बहुत ही नेक विचार शिवानी। तो किसान साथियों, अपने जीवन में हमेशा दूसरों के लिए अच्छे सोचे, ले अच्छे कर्म करें, जिससे आप अपने जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं।
1: बिल्कुल मुस्कान, और इसी विचार के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं और अपने किसान साथियों से पूछ लेते हैं आज का प्रश्न।
0: और आज का प्रश्न है, दीपों में धान की बुवाई का उचित समय कौन सा है? शिवानी, प्रश्न एक बार पुनः हमारे किसान साथियों को बता दे।
1: मुस्कान, हमारे किसान साथियों को आज बताना है कि द्वीपों में धान की बुआई का उचित समय क्या है। और साथियों, हम समझते हैं कि आपने प्रश्न अच्छी तरह से सुन लिया होगा और अब इसका उत्तर भी आप ही को खोजना है। खैर, यदि आपको इस प्रश्न का सही जवाब नहीं मिलता है तो आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें, कार्यक्रम सुनते रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम हर रोज की तरह आज भी इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: मुस्कान, अब हम अपने किसान साथियों की मुलाकात कराने जा रहे हैं बिमली टांगी रहने वाली महिला पशुपालक श्रीमती नीला देवी जी से। तो चलिए साथियों, करते हैं इनसे मुलाकात और पशुपालन से संबंधित जानते हैं इनके अनुभव।

0: लीला देवी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: आप बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: वही पशुपालन कर,
0: कौन कौन से पशु आपके पास हैं?
1: गाय है, बकरी है, मुर्गी है।
0: कितनी गाय है?
1: गाय 10 तक है,
0: गाय 10 है। और मुर्गी?
1: मुर्गी 20-25 हुई,
0: और बकरी?
1: बकरी तो 4।
0: 4 बकरी। सबसे पहले हम गाय की बात करते हैं। आपने बताया कि आपके पास 20-25 गाय हैं,
1: जी
0: तो गाय को रखने के लिए आपके घर में क्या व्यवस्था है?
1: गाय का घर अलग से बनाए,
0: घर अलग से बना है,
1: जी
0: उसकी साफ सफाई किस तरह की जाती है?
1: वही सुबह उठ के साफ सफाई करके फिर उसके बाद दूध निकालती, दो ही गाय दूध देते हैं
0: कितने लीटर फिर भी दूध हो
1: और
0: जाता है?
1: 5 लीटर तक मिलता।
0: तो ये 5 लीटर दूध को आप क्या करती हैं?
1: सेल करते घर घर में,
0: सेल। कितने रुपए लीटर के हिसाब से दूध बिकता है?
1: लीटर तो अभी 90 रुपये करके देते
0: 90 रुपए करके
1: जी।
0: हैं। अच्छा, गाय की आहार व्यवस्था की बात करते हैं कि गाय को आप खाने में क्या देती हैं, वो किस तरह से उसकी व्यवस्था करती
1: खाने
0: हैं?
1: में सुबह तो आटा वगैरह खिलाते,
0: जी,
1: उसके बाद में खोल के खेती में भगा देते
0: चरने के
1: दिन,
0: लिए।
1: जी दिन में खुल्ला चर के आते, फिर शाम को आते तो फिर वही आटा पानी वानी दे के बांध देते।
0: इतना आहार मतलब देकर गाय संतुष्ट हो जाती है, उन्हें भूख तो नहीं लगती और
1: नहीं
0: उनका पेट भर जाता
1: हाँ
0: है?
1: दिन में तो खुल्ला चरते हैं ना,
0: अच्छा,
1: तो पेट भर जाते। से वो लोग शाम को आते पानी आटा सब दे देते, तो वो लोग पेट भर जाए करके चुप से अपना,
0: खाएगी नहीं,
1: हाँ नहीं सो दे बैठ जाते
0: बैठी रहती
1: जी।
0: हैं। गाय में कभी कोई बीमारी वगैरह देखी है आपने?
1: हाँ आया था एक बार 4-5 साल हो गया, जो टांग है ना उसमें कुछ मतलब लोग का जो नाखून है
0: खुरपका
1: जी, हाँ
0: रोग जो होता है,
1: हाँ
0: माउथ एंड फुट डिजीज जिसे
1: हाँ
0: कहते हैं।
1: ओटम ज्यादा गाय
0: हाँ
1: थे भी नहीं मेरे पास,
0: जी
1: दो तीन ही थे, तो
0: जी
1: उसमें भी एक को टांग खराब हो गया था,
0: तो फिर उसका इलाज किस तरह किया?
1: वो मेडिकल से वेटनरी वाले को लेके आए, फिर वो लोग दवाई वगैरह डाले, इंजेक्शन लगाए, फिर आस्ते आस्ते ठीक हो गया था।
0: इसके अलावा भी पशु हैं, जैसे कि हम इंसानों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो इसी तरह इन पशुओं में भी होते हैं, तो आप किस तरह से पहचानते हैं कि पशु जो है वो स्वस्थ नहीं है?
1: और ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि साल में 2 दफा वेटनरी वाले आते,
0: जी
1: इंजेक्शन लगाते,
0: जी
1: ये तो इतना ज्यादा तो बीमार नहीं हुए,
0: बीमार नहीं हुए हैं।
1: ओ वही मतलब ठीक से चरते उरते नहीं, खाते नहीं तो खाएंगे नहीं तो दूध कहाँ
0: दूध
1: से
0: नहीं दे
1: आएगा।
0: पाएंगे।
1: हाँ
0: ऐसे लक्षणों से आप पहचान जाती हैं कि आपका पशु जो है वो स्वस्थ नहीं है,
1: जी
0: तो फिर आप दवाई देते हैं उसको या फिर वेटनरी तक ले
1: हाँ
0: जाते हैं?
1: नहीं वो जाके बोलने से वो लोग दवाई देते, कीड़ा का दवाई फिर खिलाने से फिर थोड़ा ठीक हो जाते।
0: अच्छा, अब हम बात करते हैं मुर्गियों की। आपने बताया कि आपके पास मुर्गी भी है,
1: जी
0: मुर्गी पालन आप करते हैं,
1: जी
0: कितनी मुर्गियां हैं?
1: मुर्गी तो है 20-25 मुर्गी है
0: मुर्गी 20-25 है।
1: जी।
0: मुर्गी से क्या उत्पाद आपको मिलता है, क्या चीजें
1: मुर्गी से
0: मिलती हैं?
1: बोलने से हम लोग अंडा तो ऐसा बाहर से खरीदते भी नहीं, जो
0: जी,
1: मुर्गी है घर में मिलता हम लोग खाने के लिए हो
0: कितने
1: जाता।
0: अंडे हो जाते हैं एक सप्ताह में?
1: 1 हफ्ता में तो 20-30 अंडा हो
0: हाँ,
1: जाता। हाँ
0: सारा तो आप
1: तो
0: यूज नहीं करते
1: नहीं
0: होंगे घर में।
1: वो हम लोग खाते, और जो मुर्गी कुड़ुक होते तो लोग बैठा देते ना बच्चा निकालने के लिए
0: अच्छा, तो उससे और मतलब उनकी बढ़वार
1: जी।
0: हो
1: हाँ
0: जाती
1: जैसे
0: है।
1: मुर्गी ज्यादा होते में से मुर्गी बिक्री कर देते,
0: एक मुर्गी कितने में बिक्री होती है?
1: केजी 500 करके, 100-550 उस तरह, घर ही से कोई भी ले ले, घर में नहीं बिक्री करते
0: बाहर में नहीं करते मतलब,
1: नहीं।
0: यहीं पे
1: हाँ
0: लोग
1: यहीं
0: आके?
1: पे, हाँ बस्ती वाले आके ले लेते
0: अच्छा। इसके अलावा आपने बताया कि बकरी भी पालन करती हैं
1: जी।
0: आप।
1: बकरी तो ऐसी दो चार ही है अपना शौक के लिए रखी,
0: बकरी
1: अभी
0: दो चार
1: मतलब
0: ही
1: हाँ
0: हैं?
1: ज्यादा नहीं है, और
0: हाँ
1: बकरा रहने से हम लोग पूजा वगैरह करते
0: हाँ

0: काम आ जाती
1: है, बिक्री नहीं करते हैं तो फिर बकरी से आपको क्या उत्पाद मिलता है, किस लिए रखी है?
0: वो पूजा करते ना तो हम लोग को बकरा का जरूरत रहता।
1: अच्छा,
0: वो एक लिए हो जाता।
1: पशुपालन के अलावा और क्या करते हैं आप?
0: और तो ऐसा नहीं, अपना थोड़ा जमीन है
1: जी,
0: वो सुपारी है, केला है, नारियल है।
1: अच्छा,
0: थोड़ा बहुत है।
1: कितने कितने पेड़ होंगे? सुपारी का कितना पेड़ है?
0: सुपारी का होएगा 200 तक होएगा।
1: तब तो अच्छी सुपारी निकल आती होगी उनसे।
0: लगता फिलहाल अभी उतना नहीं है क्योंकि पेड़ ना मर गया पूरा।
1: अच्छा,
0: तो थोड़ा बहुत ही है।
1: और केले का क्या स्थिति है?
0: केला तो अपना घर में खाने का ही
1: उतना ही है
0: जी।
1: नारियल कितने होते हैं?
0: तो है 20-25 पेड़ है। डाब भी कभी बिक्री करते, नारियल भी बिक्री करते।
1: तो इन सभी चीजों से मिला जुला कर, मतलब कृषि कार्यों और पशुपालन से आपको आय जो है वो अच्छी मिल जाती है?
0: वो इसे मतलब हम लोग का घर चल जाए,
1: घर परिवार उसी से चल रहा है,
0: इसे चलता है। और कोई आमदनी?
1: और कोई साधन आमदनी नहीं। जैसा आपने बताया कि सुपारी के पेड़ अभी बहुत अच्छी दशा में नहीं, तो उनको क्यों नहीं आप ठीक करा लेते हो, उनको और वापस उपजाऊ बनाओ? पुराने गलत पेड़ों को निकाल दिए जाना चाहिए, है ना। उन बगीचों को आप मेंटेन करो ताकि आपको फिर से वो फल देने लग जाए और आपकी आय में भी इस तरह से बढ़ोतरी होगी।
0: अभी नया ये सब थोड़ा
1: गाड़े हैं नए पेड़। अच्छा अच्छा, तो उनकी देखरेख के बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: कोई कचरा सफाई करना,
1: हाँ।
0: फिर हम लोग उधर तो गाय का खाद है,
1: हाँ,
0: वो खाद थोड़ा डालते।
1: मतलब जो घर से ही खाद बन जाता है वो जो जैविक खाद है वो आप अपने पेड़ों पर डाल देते हैं। अच्छा,
0: सुपारी केला जो भी पेड़ है,
1: हाँ,
0: उसमें अपने ही घर का खाद डाल देते।
1: आपने बताया कि सुपारी के जो बागीचे हैं इसमें से सुपारी के जो फल हैं
0: जी,
1: ये एक साल में मतलब कितना हो जाता है?
0: 200 केजी तक मिल जाता।
1: 200 केजी हो जाता है, तो 200 केजी को आप क्या करती हैं, कहाँ बिक्री करती हैं?
0: इधर ही पेमा में ना दुकान है।
1: अच्छा,
0: सुपारी खरीदने का, उधर में बेच देते।
1: अच्छे दाम मिल जाते हैं वहाँ?
0: हाँ, 250-270 करके केजी।
1: तब तो अच्छा ही मिल जाता है, क्योंकि आपके पास तो बहुत अच्छी तादाद में सुपारी की पैदावार होती है।
0: महीना में 10-15 किलो उस तरह का छील के बिक्री कर देते, क्योंकि हम लोग को और कोई आमदनी नहीं है, उसी से घर चलाना है। कभी दूध रहता कभी नहीं रहता
1: जी,
0: तो उस टाइम में सुपारी निकाल के बिक्री।
1: सुपारी है, नारियल भी इसी तरह से होते होंगे
0: जी।
1: तो इनको बेचने के लिए आपको किसी बाजार की या किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है।
0: नहीं।
1: लोग आपके पेटेंट बने हुए हैं, आपके गांव में ही है।
0: ले ले।
1: हाँ, उससे एक बड़ा फायदा जो है ना वो आपको एक और हो रहा है, ये कि ट्रांसपोर्टेशन, जो सामान को अगर आप बाजार तक ले जाओगे तो उस पे यातायात पे भी खर्चा होगा, लेकिन आप अपने गांव में ही बेच देते हो तो उसके ऊपर उतना जो खर्चा है ना वो भी बचता है। जो भी आपको बचेगा वो आपकी आय में बढ़ोतरी करेगा, है ना। तो इससे भी आपको फायदा है, इनसे भी आपको फायदा है
0: जी।
1: आपके घर में और कौन कौन लोग है ना इन कामों में आपके साथ मदद कराते हैं या लगे हुए हैं?
0: वो हस्बैंड है और दो बेटी।
1: सभी लोग आपके साथ मदद करते हैं? सब मिलजुल के करते हैं ये काम
0: जी, मिलजुल के करते हैं।
1: देखिए, आप एक महिला हैं और आप खेती का काम भी करती हैं, पशुपालन भी कर रही हैं, साथ में जो इनसे मिलने वाले जो उत्पाद है उनकी बिक्री करने के लिए भी आप खुद ही अपने सामान को मतलब बेचने वाली जगह तक लेके जाती हैं, उसके अलावा आप घर भी देख रही हैं अपना, तो इतने सारे काम करने में आपको कभी कोई तकलीफ या किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा हो?
0: करना तो पड़ता है
1: जी,
0: मगर क्या करेंगे, तो अब हम लोग को तो वही करके जीना है, तो कैसी भी करना है। अभी जो सुपारी भी फलता है उसको तोड़ना भी है
1: जी
0: पेड़ से, तो वो तो मेरा हस्बैंड ना तो बीमार आला है, उस इतना ज्यादा काम वो कुछ नहीं कर सकता। शुगर भी है
1: जी,
0: वो तो नहीं कर सकता, किसी और को लेबर मतलब लेके तोड़ाती तो बच्चा लोग हर मिल के बीन लेते, छीलने का तो हम खुद छील लेते।
1: छीलते टाइम आपको कुछ तकलीफ होती है?
0: वो कभी हाथ में भी लग जाता दांव से
1: जी,
0: छीलने टाइम में। फिर कोई कोई सुपारी तो थोड़ा अच्छा छीला जाता, कोई कोई सुपारी तो छीला नहीं जाता, चिम्मड़ वगैरह भी रहता तो छीलना पड़ता। छीलती हम
1: मतलब हाथ में, आपका कहने का मतलब है कि चोट वगैरह लग जाया करती है, और है ना चोट अगर आपके लग जाए तो उससे चलेगा नहीं। चोट लगे हुए में भी दूसरे काम जो है वो संभालने पड़ते हैं, तो आपको दिक्कत आती है इस तरह से। तो
0: प्रॉब्लम तो हर चीज में आता है मगर सामना करना पड़ता है ना।
1: देखिए, आपके पास तो बहुत तादाद में ये सामान होता है ना, और उसको छीलना करना के लिए सिर्फ आप अकेले हो।
0: हाँ, वही हाथ में चोट लग जाता, फिर कपड़ा बैंडेज लगा के फिर आराम आराम से करती है, मगर वो तो करना ही तो खुद को ही तो करती है।

0: मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि अगर कोई और भी आपके मदद कर दे इस काम में, अगर आप अकेली ना हो तो ये काम जल्दी भी हो जाएगा और ज्यादा होगा, और जल्दी और ज्यादा होने से क्या होगा कि मार्केट तक जल्दी पहुंचेगा तो आपको पैसा जल्दी मिलेगा। अकेले करते हैं तो इसमें वक्त ज्यादा लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका काम बढ़े, आपके साथ मदद के हाथ बढ़े, ताकि आपका काम जल्दी हो, अच्छा हो और आपको परेशानियां कम आए, क्योंकि आपका ये काम जो है ये आपके पूरे परिवार को पाल रहा है। ठीक है ना, परिवार की आय इसी से जुड़ी हुई है, और आपका ये काम दिनों दिन बढ़े और आपकी आय में और अधिक इजाफा हो। आपसे इतनी बातें हुई, इतना वक्त आपने दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
1: थैंक यू।

0: साथियों, अभी आपने इस बातचीत के माध्यम से मुलाकात की बिमली टांग की रहने वाली एक महिला पशुपालक श्रीमती नीला देवी जी से और पशुपालन से संबंधित उनके विचार जाने।
1: किसान साथियों, चलिए कार्यक्रम का रुख मोड़ लेते हैं गीत संगीत की दुनिया में। क्यों ना हम अपने किसान भाई और बहनों को सुना दे कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल, और आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

0: उम्मीद करते हैं कि आपने इस गीत का आनंद भरपूर उठाया होगा।
1: साथियों, रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती हैं और न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि मिट्टी की दशा भी इससे बिगड़ती है। इसलिए आजकल इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। जैविक खाद के क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, इस संदर्भ में

0: अब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं जिसका विषय है जैविक खाद का उपयोग।
1: किसान साथियों, आइए अब हम आपको दे दें एक छोटी सी जानकारी जैविक खाद का उपयोग इस विषय पर। आज के समय में खेती में रासायनिक खादों का उपयोग काफी बढ़ गया है। इससे फसल तो जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन इससे मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम प्राकृतिक और सुरक्षित खेती की ओर बढ़े, जिसमें जैविक खाद का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैविक खाद क्या होती है। जैविक खाद वह खाद होती है जो प्राकृतिक चीजों से बनाई जाती है, जैसे गोबर, पौधों के अवशेष, रसोई का कचरा और हरी खाद। यह खाद मिट्टी को पोषण देने के साथ साथ उसकी संरचना को भी बेहतर बनाती है। अब बात करते हैं जैविक खाद के प्रकारों की। पहला है गोबर खाद। यह सबसे सामान्य और आसानी से उपलब्ध खाद है। इसे पशुओं के गोबर से बनाया जाता है। यह मिट्टी को पोषक तत्व देती है और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाती है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। यह केंचुओं की मदद से तैयार की जाती है। इसमें पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और यह फसल की वृद्धि को तेजी से बढ़ाती है। तीसरा है हरी खाद। इसमें कुछ खास पौधों को उगाकर उन्हें खेत में ही मिला दिया जाता है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। अब सवाल आता है कि जैविक खाद का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले खेत की जुताई करते समय जैविक खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला दें। फसल बोने से पहले 2 से 3 हफ्ते पहले खाद डालना सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा, फसल के बढ़ने के दौरान भी जरूरत के अनुसार खाद दी जा सकती है। इससे पौधों को लगातार पोषण मिलता रहता है। अब हम इसके फायदों की बात करते हैं। जैविक खाद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखती है। यह मिट्टी की सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है, जिससे मिट्टी जीवित और उपजाऊ बनती है। दूसरा, यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इससे ना तो जल प्रदूषण होता है और ना ही हवा प्रदूषित होती है। तीसरा, इससे उगाई गई फसलें स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है। आजकल लोग ऑर्गेनिक फूड को ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। हालांकि जैविक खाद के उपयोग में कुछ सावधानियां भी जरूरी है। हमेशा अच्छी तरह सड़ी हुई खाद का ही उपयोग करें। अधपकी खाद फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। खाद की मात्रा का सही ध्यान रखें।
0: जैविक खाद के उपयोग के संदर्भ में अभी आपने ये जानकारी हासिल की।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का।
5: तो क्यों ना शिवानी बता दे पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर।
0: बिल्कुल मुस्कान, और आज हमने अपने किसान साथियों से पूछा था द्वीपों में धान की बुवाई का उचित समय कौन सा है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 नंबर जैसी लंबी अवधि की किस्मों की बुवाई जुलाई माह के प्रथम सप्ताह से मध्य तक और अन्य किस्मों की बुवाई जून माह के प्रथम सप्ताह से मध्य तक करना उचित रहता है।
5: हम आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई और बहनों ने इस प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपने उत्तर को जांच लिया होगा।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का, इस वादे के साथ कि हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले किसान वाणी कार्यक्रम में।
2: तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपना और अपने पालतू पशु पक्षियों का बहुत सारा ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी में बाहर निकलने से बचें और अपने साथ साथ अपने पशुओं को भी पानी का अधिक से अधिक सेवन कराएं।

0: अपने पालतू पशु पक्षियों का बहुत सारा ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी में बाहर निकलने से बचें और अपने साथ साथ अपने पशुओं को भी पानी का अधिक से अधिक सेवन कराएं। पशुओं को शेड में रखें, उन्हें बाहर चरने के लिए ना भेजें। और इसी बात के साथ अब शिवानी
1: और मुस्कान को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी आप सुन रहे थे किसानवाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम बुजुर्ग नागरिकों के लिए।

0: की यादें।
1: बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम बीती यादें सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनिया का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है द्वीपों की वरिष्ठ महिला श्रीमती मंजीत कौर जी को। मंजीत कौर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताइए।
2: एक्चुअली मेरा जन्म पंजाब में हुआ था। मेरा गांव का नाम है संधवा, जिला जलंधर। तो शादी के बाद में हम यहाँ अंडमान में आ गए।
1: तो पंजाब तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, पंजाब के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: देखिए, पंजाब तो कहा जाता है कि सोने की चिड़िया। हर मौसम की जो सब्जियां फल है एकदम शुद्ध और ताजा मिलता है, इसलिए अच्छा है।
1: और चारों ओर हरियाली है।
2: हरियाली सबसे बहुत अच्छा है। कभी गेहूं की खेती, कभी धान की, कभी सरसों की। तो मतलब साल में 3-4 जो फसलें होती है वो हरियाली तो एनी टाइम मिलता है आपको। बाकी दूध की भी कोई कमी पेशी नहीं होती।
1: जानना चाहेंगे आपके बचपन के दिनों की कोई खास प्यारी याद जो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे।
2: मेरी माँ और मौसी दरानी जरानी थे, तो हम लोग 8 बहनें थी मिलजुल के। तो 6 भाई थे, 4 मेरे सगे भाई, 2 मेरे मसेरे भाई। तो गांव का तो फिर माहौल कैसा है आप जानते हैं, कोई फिक्र नहीं है, घूमना फिरना मस्त रहना। इतनी रोक टोक उस समय में नहीं होती थी जो आज बच्चों को रोक टोक की जाती है। वो एक बहुत अच्छा माहौल था, आज वो देखने को बहुत कम मिल रहा है। जो जॉइंट फैमिलियाँ हैं, मेरी अपनी फैमिली में मेरी सबसे बड़ी जो बहन है उनके 6 बेटे हैं, 6 बहुएँ हैं, 6 बहुओं के 4-4, 5-5 बच्चे हैं। आज भी 40 से 45 मेंबर एक साथ खाना पक, ऐसा बहुत कम मिलता देखने को।
1: जी,
2: हम
1: जी।
2: जब जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है कि आज भी उस तरह एक शादी का माहौल बना रहता है घर में,
1: और एक अपनेपन का एहसास होता है।
2: अपनेपन का एहसास होता है। हम क्यों जाते हैं अंडमान से भाग भाग के, वो फैमिली के मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, वो पुराना समय थोड़ा उसमें एंजॉय करने के लिए।
1: और स्कूल के दिनों की कोई खास याद।
2: स्कूल में मैडम, 5वीं तक हमारे गांव में स्कूल था, 5th तक। तो 5वीं तक जब पढ़े तो उसके बाद में मेरे फादर का डेथ हो गई थी। हम लोग बहुत छोटे छोटे बहन भाई थे, खाली 2, एक बहन एक भाई का शादी हुआ था। उसके बाद में हम लोग 3 गांव छोड़ के 4th गांव में स्कूल जाना होता था। तो बाकी सब बहनों ने तो छोड़ दिया, तो मैं जिद करती थी कि मुझे पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। तो क्या कैसा जाए थे, पैदल चल के जाना। मैं ज़बरदस्ती स्कूल में चले गई। तो जाने के टाइम में कुछ सहेलियां बन गई, कुछ ऐसे अपने दोस्त फ्रेंड बन गए। तो बस वाले चढ़ाते नहीं थे, पैसा नहीं मिलता था घर में, बिना पैसा के तो कोई नहीं चढ़ाएगा। घर वालों से जिद करते थे एक साइकिल ले दो। उस टाइम में तो हालात भी उतने अच्छे नहीं थे, फादर की भी डेथ हो गई थी, तो भाई भी उतने ज़्यादा बड़े नहीं थे। पैदल भी जाते थे, मस्त थे, बहुत मज़ा आता था। सर्दियों के टाइम में कोई कोई डिग्गी में, वहाँ तो पानी में बर्फ़ जम जाता, तो बर्फ़ उठा के गोले एक दूसरे को मारना, ठंडी का कुछ पता ही नहीं चलता था कि ठंडा या की है। तो वो बहुत मस्त ज़िंदगी था, वो ज़िंदगी कभी दोबारा शायद नहीं मिलेगी, और देखने को भी नहीं मिल रही।
1: जी बिल्कुल, उन दिनों की जो याद है आज भी काफी ताजा है आपके मन में।
2: मेरे मन में तो हमेशा ताजा रहती है। मेरे को जब भी मैं अपने पंजाब जाती हूँ तो मेरे स्कूल में हम जरूर जाती है, वहाँ मेरे दोस्त तो नहीं।

0: है, बहुत चेंजेस आ गया, पर फिर भी मैं जाके वहाँ में, मुझे लगता है मैं अपने बच्चों को, मैं यहाँ में स्कूल आती थी, पैदल आते थे, फिर साइकिल किसी किसी दोस्त का उसमें जाना, तो बच्चे ही बोलते इतना दूर स्कूल आते थे।
1: जी
0: बट मेरी एक मैडम थी साइंस की, बहुत अच्छी थी, तो मेरे घर की इतनी हालात ख़राब हो गई, जब 7th में मैं गई तो बुक किताब यूनिफॉर्म लेने का भी उतना वो नहीं था, तो मेरे घर में मैडम आई, इनको भेजो, इनकी यूनिफॉर्म बुक्स का मैं खर्चा उठाऊंगी, मेरा बच्चा है स्कूल का, बाद में मेरा बच्चा को थोड़ा देखेगी। तो मैडम हम स्कूल से जाके आके शाम को उसका बच्चा को देखना, तो तब जाके मैंने 7th पास किया। हमारे पंजाब में तो 6th क्लास से ABC लगता था, बट यहाँ मेरे बच्चों ने मुझे बहुत प्रिपेयर करके मुझे बहुत सिखाया है। मैं सबसे पहले तो हिंदी बात करना नहीं आता था, तो थोड़ा बोल लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, बाकी काफ़ी मतलब चेंजेस आया अंडा मन में
1: अब
0: जी
1: बातें करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। आपने कहा
0: जी
1: था कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं,
0: जी
1: तो इस संस्था से आप कब जुड़ी?
0: जी मैडम 2000 में हमारी एक कृषि विज्ञान केंद्र की, जो सिप्पी घाट में है ना, वहाँ एक मैडम होती थी कनकलता करके, महिलाओं के लिए, तो मैं सोचती थी कि वो भगवान थे। तो ऐसे ही मैं, हम लोग कभी कभी कुछ मीटिंग होता था हमारे गांव में आती थी, क्योंकि मैं डेयरी का काम करती थी, तो जब मैं उनका साथ मिली तो मेरे को बोली आप एक काम करो, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, उसमें बहुत फायदा है। तो हमारे जो गरीब महिलाएं, जो BPL जिसको बोलते हैं, तो शुरू में तो बहुत मुश्किल होया, कोई लेडीज आगे आने ही नहीं मांगती थी। हम जहाँ रहती थी हाथी टापू में, वहाँ बंगाली समुदाय के लोग ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा समझाना, बात करना थोड़ा मुश्किल होता था, फिर भी प्यार था आपस में, थोड़ा समझा बुझा के वो मैडम भी आती थी। जैसा एड्स का ऊपर में कभी कभी उसने ड्रामा करवाना, हमारी औरतों के मनोरंजन का थ्रू से हम लोग को जोड़ दिया, तो एक अंदर से सबको एक भावना होने लगे कि अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम भी अपना पास होता है, काम करने का भी रास्ता मिलता है। तो उन्होंने हमारा पहला, सबसे पहला 2000 में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया 10 लेडीज का, उसमें 25 रुपये मंथली हम लोग बांटते थे।
1: अच्छा
0: तो जैसे शुरू किया तो मैंने मैडम से एक बात बोला, मैडम हम लोग ग्रुप जरूर बनाएंगे, पर जो ग्रुप में पैसा डालेंगे हम अपने हस्बैंड से नहीं लेंगे। तो बोली फिर कैसा होगा? हम बोला उसके लिए भी रास्ता है, हमारा एक महिला मंडल था, मतलब वो एकदम बंद हुआ था, तो उसको क्यों ना चालू किया जाए, तो उसमें एक ऐसे शेड की तरह था। हम बोला देखिए अंडमान में इतना नारियल, सबका घर में नारियल है, आप एक काम करिए, सब महिला लोग को बोलिए अपना घर से कम हफ्ता में दो दो झाड़ू बना के लेके आए, एक हफ्ता में दो झाड़ू कोई बड़ा काम नहीं है, उनकी जो सप्लाई करनी है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो मेरी एक फ्रेंड थी यहाँ में, अनुषिया करके तमिल लेडीज थी, बहुत फ्रेंड थी, तो उन्हों को बोला, हम बोला म्यूनसिपल में मेरा सप्लाई, बोले अब कितने हज़ारों भी बनाए म्यूनसिपल मेडिकल में सब जगह सप्लाई कराएंगे। तो हम लोग वहाँ से शुरू किया, तो झाड़ू बना के हम लोग दे देते थे, वो लोग खुद ही आके ले जाते थे, तो महिला उससे जुड़ी। उसका बाद में तो फिर बहुत लंबा स्टोरी है, फिर तो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गए।
1: समूह से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए?
0: मैडम मेरी तो ज़िंदगी की जो कहानी है, मैं तो अगर समूह सहायता के संग अगर नहीं जुड़ती तो शायद मैं आज आपका सामने नहीं होती, तो मेरी लाइफ कुछ और होती। हम 80 में अंडमान आए थे, उसका बाद में 90 तक पुलिस गुद्दर में मेरे हस्बैंड ग्रंथी की ड्यूटी करते थे, कुछ मतभेद हुए ड्यूटी से निकाल दिया, तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 1 साल का बेटा था, बेटी 1 डेढ़ 2 साल की बेटी, दो बच्चे मेरे। तो बहुत कठिन सवाल पूछ लिया आपने आज, पुरानी जो अंदर की एक नारी कह सकते जागी, जहाँ अपना दुख प्रकट करने का एक जो मौका आपने दिया, तो हमें बहुत तकलीफ हुई। मेरा घर वाला बोलता हम लोग पंजाब चले जाएंगे, यहाँ तो मुश्किल है, पंजाब में छोटा मोटा घर है, वहीं आके गुजरा। तो मैंने बोला एक बार घर छोड़ दिया, जहाँ तो मर के जाना, जहाँ करके जाना, जहाँ कुछ करके दिखाना। उन्होंने कभी काम नहीं किया था, सिर्फ गुरुद्वारा के ग्रंथी थे, नहाना धोना पाठ पूजा। तो मैंने ठीक है, तो आप बच्चों देखिए, मैं चौम्पिन होटल एक बंगाली क्लब में, मैं वहाँ पे गई, वहाँ जाके काम मांगा। तो बोले क्या काम करेगी? हम बोले कुछ भी, होटल में तो बहुत सारे काम होते हैं, जब तकलीफ होती है तब ना रास्ते बहुत निकलते हैं,
1: जी
0: मैं जब तकलीफ नहीं आती तो आदमी ना अपने आप को स्टैंड नहीं कर सकता, मेरी एक सोच है, तकलीफ आती है तो रास्ते बहुत मिलते हैं, पर चुनना हमें ही होता है। मम्मी थी उनकी, बोली आप लोग गुरुद्वारा के पुजारी है, हम आपसे बर्तन का काम नहीं करा सकते, हमारी एक जगह है हाथी टापू में, आप वहाँ पे रहोगे। मेरा एकदम मन भर आया, मैंने उनको बोला इस टाइम मेरे को मुर्दा खाड़ी में अगर थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, मैं वहाँ भी बच्चों को रख लेगी पाल।

0: तो रोने लग गया, ऐसा मत कहो, आज से तो मेरी बेटी है, मैं आपकी माँ हूँ। उन्होंने मुझे हाथी टापू लेके गया, जंगल था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने चटाई खरीद के दिया, चटाई से एक ऐसे हॉल जैसा बना के दिया, उसी में फिर कपड़ा बर्तन कुछ भी नहीं था। हम जंगली घाट मॉर्गन स्टोर है सेठ का दुकान में गया, चार बस्ता लिया, वो बस्ता को धो के उसमें बिछा के बच्चा को अपना को पाला। ये मेरी एक रियल लाइफ की स्टोरी है। बस धीरे धीरे फिर उस टाइम वीडियो का राज होता था, जगजीत सिंह के आज भी है, वो इधर ही आप लोग का इसी एरिया में रहते हैं, बहुत अच्छे थे जो प्योर है। मीटिंग तो मैं भी चली गई, सबने लोन पास कराया, मैं कैसे लोन लूँ, मेरा तो कुछ है नहीं। तो बोले आप कुछ नहीं, बोले सर मेरा तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, तो मुझे कैसे लोन मिलेगा। तो उन्होंने बोला आपकी जिम्मेदारी मैं लूँगा, पंजाबी मेहनती होते कभी बेईमानी नहीं करते। तो मुझे एक भैंसी का लोन मिला, एक वैसी खरीदा मैंने दूध वाली, फिर मैं दूध का काम वहाँ से स्टार्ट किया। एक साल का बीच में मैंने वो वैसी का लोन को रिटर्न कर दिया दूध बिक्री करके, फिर दो वैसी का मिला, फिर तीन चार करते करते 20-25 वैसी मैंने पाला, दूध का बिजनेस करने लगे, बहुत अच्छा काम चलने लग गया, बच्चे भी पढ़ने लग गए। फिर जैसे ही 10th पास हुआ, पुलिस का भर्ती निकला, मेरा बेटा ने जाके टेस्ट दिया, पास हो गया, उसको जॉब मिल गया। ए गॉड गिफ्ट मुझे जो मिला है, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर मेरा बेटी को भी पढ़ाया, मेरा बेटी का एक अपनी सोच थी कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना, तो हमारे उतने हालात उतने अच्छे नहीं थे, तो उसने 12th का एग्ज़ाम जब लिखा गर्ल्स स्कूल में, 11th 12th 10th तक तो नमूनागर में पढ़ी, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाया मैंने, तो 10th की टॉपर बनी मेरा लड़की नमूनागर में। उसके बाद में 11th 12th मैंने गर्ल्स स्कूल में लड़की को पढ़ाया, मैं दूध लेके आती थी, साथ में लेके आना, जंगलीगढ़ से पैदल जाना स्कूल, पैदल घर जाना, बोट पकड़ना जंगलीगढ़ से, बोट पकड़ के फिर हाथी टापू पैदल चल के घर जाना। ना जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया,
1: बहुत संघर्ष में जीवन रहा
0: संघर्ष
1: है
0: किया
1: आपका।
0: बोलने से, मैं तो बोलती संघर्ष होना बहुत जरूरी है, इंसान को एक बहुत अच्छा सबक मिलता है, अगर इंसान सोच ले कि मुझे ये करना है तो जरूर होता है। जिंदगी जीना है तो हिम्मत से जीना चाहिए।
1: जब आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और वहां की महिलाओं से मिली, तो उस समय आप क्या-क्या काम करते थे?
0: उस टाइम तो मेरा दूध का ही बिजनेस था, साथ साथ में हम फिर महिला मंडल बनाया वहाँ पे हाथी टापू में, तो महिला मंडल में फिर ग्रुप बना के, मतलब काफ़ी बहुत सारा, फिर मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय का साथ साथ में, फिर हम लोग मिड डे मील का कॉन्टेक्ट लिया, चार महिला लोग को, वो भी महिला भी गरीब ही थी। वही हम लोग बिमलीगंज गया, मुझे पता चला टेंडर निकलता, हम लोग टेंडर भरा, तो वहाँ पे हम लोग को डराया भी कि उसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, देखा जाएगा जो होगा। तो हम लोग क्या करा, सब्जी के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो हम औरतों को बोला अपने घर में पपीता सब्जी कुछ कुछ आप गाड़ो कुछ मेरा, तो मिड डे मील का टेंडर हम लोग को मिला, बहुत साल हम लोग उसमें भी काम किया, एक इनकम का रास्ता भी बन गया, तो टाइम कहाँ निकलता था पता ही नहीं चलता था,
1: और
0: दिन
1: सबसे बड़ी बात, महिलाएं आत्मनिर्भर बनी।
0: आप निर्मल बनी। और जो अपना एक मेहनत करके अपने आप को स्वावलंबी बनाना, वो एक अलग चीज़ होता है। हमारे ग्रुप में तो 10 महिला होती है, अगर किसी ने जुड़ना है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि महिला का व्यवहार कैसा है, बातचीत कैसी है, लेन देन उसका कैसा है, देखिए उसमें बहुत सारा फर्क पड़ता है। अगर कोई महिला कोई कमजोर है तो उसको सपोर्ट करके उसको अपने बराबर तक लेके आना, तो ये चीज़ों को हम लोग थोड़ा ध्यान रखते।
1: रेडियो के कार्यक्रम सुनती हैं आप?
0: मेरे को तो बचपन से बहुत शौक था मैडम, विविध भारती सुनती थी, रेडियो का गाना सुनने के पीछे तो मैंने मार भी बहुत बार खाया मेरी माँ से, यहाँ मैं सखी सहेली का प्रोग्राम में सुनती रहती, अच्छा लगता है। तो गाने का तो मुझे बहुत शौक था, पुराने गाने सुनने, जब शादी होना था तो मेरे भाई को हम बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक रेडियो जरूर देना, तो मैं आपको बता, तो मेरा भाई बोला इसका रेडियो तो इसका बंद करना, दिन रात जब देखो इसका रेडियो चलता रहेगा, काम करती रहेगी, बहुत शौक था मुझे।
1: क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर
0: जी
1: है, तो चलते चलते हमारे समाज से या हमारे जो बच्चे हैं, युवा वर्ग है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं तो यही कहना चाहूंगी, देखिए रेडियो के माध्यम से एक अच्छे संस्कार मिलते हैं, अगर सुने तो सुनना चाहिए, बच्चों को भी सुनना चाहिए, यंग पीढ़ी को सुनना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दुनियादारी है, हमारी पूरे वर्ल्ड की जो है, तो रेडियो के माध्यम से हमें मिलती है कि अच्छी चीज़ें लेना। आजकल बच्चे जो है अच्छी चीज़ों को साइड कर देते हैं, गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, तो रेडियो जो है वो तो दिखेगा नहीं, तो सुनने से एक उसको अपने अंदर में अगर धारण कर ले तो अपना जीवन बहुत सफल होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मंजीत कौर जी, आप कार्यक्रम में आई, आपने अपना की

0: समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद मैडम। अब मैं पूरी आपकी रेडियो स्टेशन की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और थैंक्स धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ये निमंत्रण दिया, मुझे आके दो अपनी दिल की बातें कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: बीती यादें
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बुजुर्ग नागरिकों के लिए। नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता की मिसाल श्रीमती मंजीत कौर से की गई ये भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थी सोनिया कुमारी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जय शिला। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं सुनिए झलकी, फाइल गुम हो गई। लेखक हैं श्री जितेंद्र पाल सिंह।
4: लाल बत्ती जला दी है। आप सभी इत्मीनान से अपनी परेशानियां बताइए। यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
5: सर, जब से नए एसओ साहब आए हैं हमारा काम चौपट हो गया है।
6: हाँ सर, ना तो वो लेते हैं और ना लेने देते हैं।
7: सर, मुझे अपने हस्बैंड के लिए नए डिजाइन का स्वेटर बुनना है, लेकिन जब से वो आए हैं मैं स्वेटर ही नहीं बुन पा रही।
6: साहब जी, वो तो फाइल ऐसे फटाफट निकालते हैं जैसे बंदूक से गोली निकल रही हो। फाइलों में कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठेकेदारों के बिल, लोन्स के बिल बिना रुकावट के सैंक्शन हेतु भेज देते हैं। हाँ।
5: सर, अगर ये फाइलें ऐसे ही फटाफट निकलती रहीं तो हमारी चाय तो बंद हो जाएगी।
4: अरे आप लोग तो खाम खा घबरा रहे हैं। आप लोगों ने तो बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगाया।
7: हाँ,
4: अब ऐसी क्या बात हो गई है जो आप भीगी बिल्ली बने हुए हैं?
6: वो सर, सर ऐसी बात नहीं है। ये एसओ सीधी भर्ती से आया है। अपने आप को जीनियस समझता है।
5: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, सर, सत्यवादी हरिचंद समझता है अपने आप को। सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे।
4: अरे जवानी का जोश है, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ अभी उठाया नहीं है। वो अभी ऑफिस के कायदे कानून से वाकिफ नहीं है। उसे आप अपने रंग में रंगो, उसे काम करने का सलीका बताओ।
7: सर, यही तो मुश्किल है। हम उन्हें कुछ बताएं, उल्टा वो हमें भाषण जानने लगते हैं। समय की पाबंदी, डिसिप्लिन में रहो और बिना जाने क्या क्या। सर,
4: पहले आप इसकी नफ्स को पकड़िए। अगर इस पर भी बात ना बने तो अपना पुराना फार्मूला लगाइए।
6: सर, इस अभियान में हम आज से ही जुट जाते
7: हैं।
6: या तो उसे अपने रंग में रंग देंगे या यहाँ से उसका पत्ता साफ कर देंगे।
4: भाई देखो, आप सभी का तो मामला यहाँ निपट गया है। लेकिन आप एक बात भूल गए।
5: अब वो क्या सर?
4: आपके दिलों में उसकी इतनी दहशत फैल गई है कि आप हमारी चाय भी भूल गए हैं।
5: भूले नहीं सर, भूले नहीं सर। चाय अभी आ रही है।
7: सर, चाय के साथ गरम गरम समोसे भी आने चाहिए।
4: बिल्कुल सही फरमाया मधु ने। भाई अपने चक्कर में आप लोग हमारी जरूरतें तो कम से कम कम ना करें। अकेली चाय से काम नहीं चलेगा।
6: अरे लीजिए साहब, चाय के साथ और समोसे भी आ गए।
4: अरे सब लो भाई, सब लो, आप भी लो, आप भी लो। अरे तुम भी लो भाई।
5: जी जी जी जी,
4: हाँ लो लो। मिस्टर विजय।
8: यस सर।
4: इस वक्त क्या बजा है?
8: वो
4: आप अब तशरीफ ला रहे हैं, मैंने सुबह आपको तलब किया था ना।
8: सर, मैं सुबह सही समय पे ऑफिस आ गया था। सर, सुबह से ही लोगों की भीड़ लग जाती है, उनसे आवेदन लेकर फाइल पर नोटिंग वगैरह कर अब आपसे सब आपसे सैंक्शन लेने आया हूँ। सर,
4: जाओ जाओ, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। फाइलें प्रॉपरली और थ्रू प्रॉपर चैनल ऊपर भेजिए, समझे?
8: ठीक है सर।
7: अरे सर, ठीक है।
9: संगीता, संगीता देखो।

0: लाइन ठीक हो रही है कि नहीं, देख देख तो सही।
1: हाँ हाँ, ये लाइन उल्टी, उसके बाद सीधा बुनो, यहाँ से डिजाइन पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बुन रही हो।
0: ठीक है। अरे हाँ, तुझे याद है ना, आज लंच में सेल में चलना है।
1: अरे हाँ हाँ, जरूर चलूंगी, क्यों नहीं।
2: अरे मैं आज मटर पनीर लाया हूँ, आप थोड़ा सा ले लीजिए।
1: ये भी कोई पूछने की बात है, लाइए।
2: हाँ लीजिए लीजिए,
1: अभी लंच कर लेते हैं।
2: ठीक है
1: शर्मा जी, आप भी आइए।
3: मैं आज लंच नहीं करूँगा,
4: दरअसल मुझे कहीं जाना है।
5: अरे आप लोगों ने अभी से खाना शुरू कर दिया, अभी तो 12 बजे हैं।
0: सर आप पूरे ऑफिस में देख लीजिए, सभी लोग खाना खाते हुए मिलेंगे, फिर सर हमारे लिए ये पाबंदी क्यों?
5: अरे आप लोगों को समय की कदर करनी चाहिए, हर काम समय पर करना चाहिए। लंच 1 बजे होता है, कल से सभी समय का ख्याल रखेंगे।
1: सर आज हमें एक सेल में जाना है, प्लीज आज जाने दीजिए।
0: जी
5: ठीक है, जाने से पहले इन फाइलों को पुट अप करके लाइए, चीफ साहब ने तुरंत मंगवाई हैं।
0: सर लंच के बाद फाइल भी निपटा देंगे हम।
2: जी इन्हें जाने दीजिए, लंच के बाद सारा काम हो जाएगा।
5: तीन बज गए, अरे सारा सेक्शन खाली पड़ा है। मिस्टर शर्मा आप अकेले बैठे हैं, सब कहाँ गए?
4: सर सब लंच में गए हैं, अभी आ जाते हैं।
5: अरे लंच का टाइम तो कब का खत्म हो गया, दो दो घंटे लंच करेंगे तो काम क्या खाक करेंगे?
4: सर ये दफ्तर की परी पार्टी चली आ रही है।
5: अच्छा सब लोग आ जाएं तो सभी फाइलें पुट अप करके मेरे पास लाएं।
4: ठीक है सर, ठीक है।
0: ओ संगीता, आज तो मैं बहुत थक गई, कितनी बड़ी सेल थी है ना।
6: मुझे तो ये साड़ी बहुत जच रही है, पूरे 200 रुपए का डिस्काउंट मिला है।
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रिंट है साड़ी का, बच्चों के कपड़े भी तो बहुत फैशनेबल है ना।
6: तुम्हारे स्वेटर का डिजाइन भी तो बहुत उम्दा है।
2: अरे अरे आप लोग तो सेल का सारा सामान उठा लाई।
6: अरे कहाँ, पैसे कम पड़ गए, अभी तो और बहुत कुछ लेना था।
0: कल सेल का आखिरी दिन है मिस्टर गुप्ता, आपके रहते हमें रुपयों की कमी नहीं होनी चाहिए।
2: डोंट वरी, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आप लोग फाइल तो निपटाइए, एसओ साहब अपना लेक्चर मुझे सुना गए हैं, उन्हें फाइलों को निपटाना जरूरी है। एसओ साहब के लिए अर्जेंट है तो हमारे लिए और भी जरूरी।
0: हम समझ गए।
5: क्या बात है, बहुत शोर हो रहा है। अरे 4 बजने को हुए, फाइलें अभी तक पुट अप क्यों नहीं हुई?
2: सर फाइल गुम हो गई, मिल नहीं रही।
0: हाँ सर पप्पू, मेरी फाइल भी नहीं मिल रही, मैंने यहाँ टेबल पर रखी थी सर, वो पता नहीं।
6: मैं तो दराज में रख कर गई थी, अब यहाँ है ही नहीं।
5: क्या क्या कह रहे हैं आप लोग, फाइल गुम हो गई? अरे लंच से पहले तो आप सबको मैं फाइलें दे के गया था, यही कहीं होगी, अपनी सीटों पे देखिए देखिए देखिए।
2: वो सर लंच में चूहे फाइलों को खा गए होंगे, या चूहे भी तो बहुत हो गए हैं।
5: मजाक मत करो, चूहे फाइल को खाते नहीं कुतरते हैं, और चूहे ऐसा करते भी तो फाइलें नजर आती कुतरी हुई, पूरी गायब नहीं हो जाती। और फिर मिस्टर गुप्ता लंच में तो आप यही थे।
2: अब सर वो आप मुझे शक के दायरे में ना ले। लंच में 1 घंटे की नींद मैं लेता हूँ, सोता हूँ कुर्सियों पर पांव फैलाकर, इस दौरान चूहे क्या करते हैं मुझे कोई खबर नहीं।
5: सबके सब निकम्मे। अरे मैं कुछ नहीं जानता, फाइलें ढूंढ कर लाइए, नहीं तो सबके सब फंसोगे। अरे मैं सीधे चीफ साहब के सामने पेश कर दूंगा, फाइलें लाइए जाइए, मैं जा रहा हूँ।
0: हम अभी फाइलें ढूंढ कर लाते हैं।
2: अरे अब देखना गुम फाइलें क्या गुल खिलाती है।
6: फाइलें ठीक से गुम हो गई है ना गुप्ता जी?
2: अरे फिक्र ना करो, फाइलों को ऐसे ठिकाने लगाया है कि एसओ के साथ पुरखे भी ढूंढ ना पाए।
6: भाई मैं तो घर जा रही हूँ, इतना सामान हो गया है, अब तो ऑटो लेना पड़ेगा।
0: अरे रुकना, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना प्लीज। गुप्ता जी जरा संभाल लीजिएगा यहाँ के मामले को।
2: अरे मेरे रहते कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ कल टाइम पर आ जाना, सुबह रोमांचक मीटिंग जो है।
0: ठीक है, बाय।

0: तो आप लोगों ने अपना फार्मूला इस्तेमाल कर ही लिया।
1: यस सर, सारा मामला फिट हो गया है, फाइलें ठिकाने लगा दी गई हैं, अब गेंद आपके कोर्ट में है।
2: गुड मॉर्निंग सर। सर हमें देर तो नहीं हुई।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। भाई आप सही वक्त पर आ गई हैं। लेकिन वो मिस्टर शर्मा कहाँ हैं?
3: मैं हाजिर हूँ सर।
0: अरे भाई मीटिंग का कोरम पूरा हो गया है। शर्मा जी हाँ। जाकर एसओ को बुला लाइए।
4: मैं आ गया सर। आई एम सॉरी, मुझे जरा देर हो गई। मैं लोगों से मिलकर उनके आवेदन लेकर आया हूँ सर। सभी लोग अपने अपने केस लेकर मामले को यहीं डिसाइड कर लें।
0: ये सब तो ठीक है, लेकिन कल की फाइलों का क्या हुआ? मेरे पास अभी तक एक भी केस नहीं आया।
4: सर मैंने कल सभी फाइलें इन लोगों को दे दी थी, लेकिन ये कहते हैं कि फाइलें गुम हो गईं।
0: आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? सभी फाइलें एक साथ गुम कैसे हो सकती हैं?
4: मैं खुद हैरान हूँ सर। लंच से पहले मैंने इन्हें फाइलें दी थी और शाम को ये फाइलें गुम बता रहे हैं। क्यों मिस्टर गुप्ता, आपने फाइलें ढूंढी नहीं?
1: आप क्या कह रहे हैं सर, आपने तो हमें कोई फाइल दी नहीं। वैसे भी सभी फाइलें आप खुद डील करते हैं।
4: ये झूठ बोल रहा है सर। क्यों मिसेज मधु, मैंने आपको भी तो फाइल दी थी ना?
2: नो सर, मुझे तो कोई फाइल नहीं मिली। हमारे पास जो फाइल आती है हम उसे फौरन निपटा देते हैं, कोई पेंडिंग नहीं रखते अपने पास।
3: मैं तो कल वैसे ही जल्दी चला गया था, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं।
4: ये सब झूठ बोल रहे हैं सर।
0: बहुत खूब मिस्टर विजय, ये सब झूठ बोल रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं। बहुत हो गया, अब आप अपना नाटक बंद कीजिए और फौरन मुझे फाइल दिखाइए।
4: सर मैं सच कह रहा हूँ, फाइलें मैंने इनको दी थी, एक एक की सीट पर जाकर फाइलें दी थी। आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर?
0: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुरंत फाइलें लाइए वरना मैं आपको अभी सस्पेंड करता हूँ।
4: अभी देख कर लाता हूँ सर।
1: सर देखा कैसे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है।
2: फाइलें तो मिलने से रही, अब आएगा मजा।
5: सर चाय नाश्ते का इंतजाम करूं?
0: हाँ भाई हाँ, जब तक फाइलें नहीं आती चाय नाश्ता ही हो जाए।
4: लीजिए सर, लीजिए, ये रही फाइलें, हाजिर हैं।
2: क्या फाइलें मिल गई?
4: अंदर आ जाइए। यहाँ मीटिंग चल रही है।
0: आइए आइए बैठिए सर, आप यहाँ।
4: हाँ तो सर ये रही आपकी फाइलें।
0: ये फाइलें कहाँ से मिली?
4: दरअसल ये फाइलें गुम ही नहीं हुई थी।
1: फाइलें गुम ही नहीं हुई थी?
4: अरे मैंने असली फाइलें आपको दी ही नहीं।
6: मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मिस्टर विजय आपके एसओ नहीं
4: जी,
6: ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के आदमी हैं।
4: क्या
2: सर, हम लोग जाए, बहुत से काम निपटा रहे हैं सर।
4: सब यहीं बैठेंगे। अरे लाल बत्ती में तो रोज मीटिंग होती रही है, आज कमरा लॉक कर दिया गया है।
6: आप सबकी कारस्थानियों की शिकायतें हेडक्वार्टर पहुंचती रही।
4: क्या
6: इन सब का पर्दाफाश करने के लिए मिस्टर विजय को यहाँ एसओ बनाकर भेजा गया था। मिस्टर विजय आगे की कार्रवाई करो।
4: ये लोग आम जनता की फाइलें गायब कर देते थे, जब तक लोग इनकी मुट्ठी गर्म नहीं कर देते तब तक फाइलें गुम रहती।
0: सर ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है।
2: जी यहाँ सर कुछ नहीं होता जी। सर
6: आप लोग शांत रहिए, पहले पूरे मामले को समझने दीजिए, पहले इसका खुलासा हो जाए। मिस्टर विजय कंटिन्यू योर स्टेटमेंट।
4: आम जनता सुबह से आकर इनका इंतजार करती और ये उनको अटेंड करने के बजाय चीफ के कमरे में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते, चापलूसी करते। लंच में ये तीन तीन घंटे गायब रहते, लोगों को ये शाम को मिलते।
1: सर हमें माफ कर दे, अब फाइलें गुम नहीं होंगी।
2: सर मैं अब अपने हस्बैंड का स्वेटर ऑफिस में कभी नहीं बुनूंगी।
5: सर इंक्वायरी तुरंत कर दिया करूंगा।
2: सर मैं भी शॉपिंग के लिए लंच में मार्केट नहीं जाऊंगी।
0: सर इन्हें माफ कर देना।
4: क्यों चीफ साहेब, ऑफिस का रूटीन तो यही है ना, मैं आपको सुबह आकर

0: चाय पिलाया करूं हैं?
1: सॉरी सर, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
2: हमें माफ कर दे सर,
3: कभी पहले
2: गुम नहीं
4: होगी। अभी आप सुन रहे थे झलकी, फाइल गुम हो गई। लेखक थे श्री जितेंद्र पाल सिंह और निदेशक थे कमल दत्त। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं। श्रोताओं, अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर, 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। पांच बजकर 55 मिनट पर सुनिए एग्री टिप्स, विषय रहेगा पुदीने की खेती। जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर। सवेरे 6:15 पर सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष, विषय रहेगा माँ। रामचरित मानस गान का समय रहेगा सवेरे 6:30। सवेरे 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम देश रागनी। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:30। श्रोताओं, सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे सुधा सिंह, पंकज उदास, कंवल सिद्धू।

बाल जगत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 9 बजे। सवेरे 9:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अली अहमद हुसैन और साथी का शहनाई वादन। लाइव फोन इन फिल्मी सॉन्ग प्रोग्राम हेलो फरमाइश का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। जनता जंक्शन कार्यक्रम में आप मदर्स डे स्पेशल पर विशेष कार्यक्रम सुन पाएंगे, समय रहेगा दिन के 11 बजे। दिन के 11:30 पर सुनिए कार्यक्रम गजल, फनकार होंगे सलमा आगा, सोमेश कुमार, अशोक खोसला। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12 बजे।

जिसमें श्रोता लघु नाटक सुनेंगे। बारह बजकर 30 मिनट पर सुनिए मलयालम कार्यक्रम, जिसमें आप पुराने गीत सुन पाएंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:10। कलाकार होंगे विशु भटनागर। दोपहर 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम घर संसार। श्रोताओं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 5वीं कड़ी आप सुन पाएंगे शाम 4:30 पर। 4:40 पर आपको अवगत करवाएंगे कार्यक्रमों के विवरण से। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम बहारों की शाम का आनंद लीजिएगा शाम 4:45 पर। ये तो थे हमारे कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने, उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और धनीखाड़ी बांध में जलस्तर घटा, विभाग ने आम जनता से जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 500 मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का पूरे देश में एक ही समय पर किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में प्रिलिटिगेस पर लंबित है, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए। श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के

अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, धन्नीघाड़ी जलापूर्ति और शिक्षक प्रशिक्षण। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धन्नीघाड़ी बांध में जलस्तर 50 मीटर से नीचे जा चुका है, जिसके कारण अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद को आपूर्ति किए जाने वाले जल की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे निपटने के लिए परिषद ने कल रेडलाइन द्वीप से जल संग्रह की वैकल्पिक व्यवस्था प्रारंभ की है। अब तक लगभग 200 टन जल एकत्र कर टैंकरों द्वारा लंबालाइन जल शोधन संयंत्र तक पहुंचाया गया है, जहां इसके उपचार और वितरण की व्यवस्था की जा रही है। विभाग जल संकट के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है तथा आम जनता से अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग कर जल का विवेकपूर्ण उपयोग कर तथा किसी भी प्रकार की अनावश्यक जल बर्बादी से बचें। श्री विजयपुरम स्थित डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा प्रशासन के पीएसटी, जीटीटी एवं पीजीटी के लिए दक्षता आधारित अनुभवात्मक अधिगम विषय पर आयोजित 5 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण का कल श्री विजयपुरम के विभिन्न स्थलों पर सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में सभी 9 शैक्षणिक अंचलों से 400 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। समापन समारोह में उप शिक्षा निदेशक एवं प्रधानाचार्य राज्य शिक्षा संस्थान संगीता चंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षकों के बीच दक्षता आधारित एवं अनुभवात्मक शिक्षण पद्धतियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डाइट एवं SIE द्वारा आयोजित इस गहन एवं सार्थक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम के अंतर्गत NCERT, RIE, भुवनेश्वर, नेल्लूर, मैसूर तथा CBSE के प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण शिक्षण सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित ज्ञानवर्धक सत्रों, व्यवहारिक प्रदर्शनों एवं संवादात्मक गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनके व्यावसायिक दक्षताओं एवं कक्षा शिक्षण पद्धतियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। द्वीप समूह में मादक पदार्थों की तस्करी एवं नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स पुलिस थाना द्वारा एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए हाल ही में श्री विजयपुरम स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुराने टर्मिनल भवन के सामने विशेष अभियान चलाकर 2 किलो से अधिक अवैध गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का नेतृत्व करते हुए निरीक्षक के बिनोज ने यह अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने कोलकाता से श्री विजयपुरम यात्रा कर रहे पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के निवासी 19 वर्षीय जमीरुद्दीन गाजी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से अवैध गांजा बरामद किया गया। NDPS अधिनियम के अंतर्गत सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए पुलिस ने मादक पदार्थों को जब्त कर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान करने हेतु जांच जारी है। यह छापेमारी पुलिस उपाधीक्षक सुमा मड्डा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश देव के समग्र पर्यवेक्षण में की गई। अंडमान निकोबार पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने तथा मादक पदार्थों की तस्करी अथवा नशीले पदार्थ के दुरुपयोग से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय शहीद द्वीप पर पैरासेलिंग गतिविधियां आयोजित करने जा रहा है। इस संबंध में निदेशालय ने पर्यटन हितधारकों, जल क्रीड़ा और नाव ऑपरेटरों से आवेदन आमंत्रित

केंद्रित किए हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर विशेष पर्यटन श्रेणी के तहत अवकाश और मनोरंजक जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देना है। निदेशालय ने जल क्रीड़ा दिशा निर्देश 2015 के अनुसार भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा ऑडिट करवाया है। शहीद्वीप में यह पैरासेलिंग गतिविधियां लक्ष्मणपुर तट और रामनगर तट पर चलाई जाएगी। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। जो द्वीप समूह जल क्रीड़ा दिशा निर्देश 2015 के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय से संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और धनी खाड़ी बांध में जलस्तर घटा, विभाग ने आम जनता से जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं सुनिए हमारे केंद्र से मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचना। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीपों में कुछ स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह के कुछ स्थानों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV रानीचंगा 11 तारीख को सुबह 7 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी अगले दिन 12 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु जलयान कल रविवार 10 तारीख को सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका कल रविवार 10 तारीख को सवेरे 6 बजे लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानीचंगा की जगह अब रानी लक्ष्मी कल रविवार 10 तारीख को सवेरे 6:15 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल रविवार 10 तारीख को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे कल रविवार 10 तारीख को दिन के 11 बजे शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस बीच ये जलयान स्वराज द्वीप की यात्रा पर दोपहर 1 बजे रवाना होगा, शहीद द्वीप से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर रविवार 10 तारीख को दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम

से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप की यात्रा पर रवाना होगा। जलयान की वापसी दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज रविवार 10 तारीख को दोपहर 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी शहीद द्वीप से शाम 4:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमुटा रविवार 10 तारीख को शाम 5 बजे स्वराजद्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 11 तारीख सोमवार को सुबह 5:30 पर स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ। जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। नंबर है 1120312323100, 03192233077 और 03192232400। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। आप सुन रहे हैं तेरी कसम फिल्म का ये गीत अदनाम सामी की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है R.D. बर्मन ने।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी वे फौलादी व्यक्तित्व थे जिन्होंने विदेशी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उनके भीतर देशभक्ति का जज्बा इतना प्रबल था कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत खुशी से ऊपर देश की आजादी को रखा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती प्रत्येक वर्ष 9 मई यानी आज के दिन मनाई जाती है। उनका जन्म 1866 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुआ था। गोखले जी को उनकी उदारवादी विचारधारा, बौद्धिक क्षमता और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं में से एक थे और उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को देश सेवा के लिए प्रशिक्षित करना था। गोखले जी का मानना था कि राजनीतिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक शिक्षा और नैतिकता भी उतना ही आवश्यक है। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गांधी जी ने उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर ही भारतीय राजनीति में अहिंसा और सत्य का मार्ग चुना था। गोखले जी ने शिक्षा के प्रसार और अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए जो कार्य किए वे आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी जयंती पर देश उन्हें एक ऐसे दूरदर्शी नेता के रूप में याद करता है जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आज हम जिस स्वतंत्र राष्ट्र में खड़े हैं वह इन्हीं वीरों की संघर्ष की नींव पर टिका है। उनका जीवन केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भारतीय के लिए नैतिकता, साहस और राष्ट्र प्रेम का एक शाश्वत स्रोत है।

0: दोस्तों, भारतीय संगीत जगत के शहंशाह गजल तलत महमूद की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना संगीत के एक स्वर्णिम युग को नमन करने जैसा है। 9 मई का दिन हमें उस मखमली आवाज की याद दिलाता है जिसने दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया। तलत महमूद न केवल एक बेहतरीन पार्श्व गायक थे, बल्कि उन्होंने गजल गायकी को एक नई ऊंचाई गरिमा प्रदान की। उनकी आवाज की सबसे बड़ी विशेषता उनका कंपन था, जो उनकी गायकी में एक अनोखी कशिश और भावुकता भर देता था। तस्वीर बनाता हूँ, जलते हैं जिसके लिए, और ए मेरे दिल कहीं और चल, जैसे गीतों के माध्यम से उन्होंने विरह और प्रेम की भावनाओं को जीवांत कर दिया। वे अपनी सौम्यता और तहजीब के लिए जाने जाते थे, जो उनके गायन में भी स्पष्ट झलकती थी। दोस्तों, आज उनकी पुण्यतिथि पर संगीत प्रेमी उन्हें एक ऐसे कलाकार के रूप में याद करते हैं जिन्होंने कभी भी संगीत की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। उनकी जादुई आवाज आज भी रूह को सुकून पहुंचाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को समाप्त करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज शनिवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम ऐसा भी होता है।
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: दोस्तों, अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल को अक्सर पूरी तरह अंधकारमय माना जाता है, लेकिन सच्चाई इससे अधिक जटिल है। क्या आप जानते हैं, ब्लैक होल स्वयं प्रकाश नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। परंतु इनके आसपास का क्षेत्र बहुत चमकीला होता है। जब गैस और धूल ब्लैक होल की ओर खिंचती है, तो वे तेजी से घूमते हुए गर्म हो जाती है और एक चमकदार डिस्क बनाती है, जिसे अक्रेशन डिस्क कहा जाता है। यह क्षेत्र इतना उज्जवल हो सकता है कि पूरी आकाशगंगा से भी अधिक चमकदार दिखे। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है और क्या यह किसी अन्य ब्रह्मांड का द्वार हो सकता है। इस प्रकार ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और रहस्यमय क्षेत्रों में से एक है।

दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिन्हें जैव दीप्त जीव कहा जाता है। जैव दीप्त जीव रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। गहरे समुद्र में जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, यह क्षमता जीव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। कुछ जीव इसका उपयोग शिकार को आकर्षित करने के लिए करते हैं, जबकि अन्य इससे दुश्मनों से बचते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मछलियां अपने शरीर पर चमकदार पैटर्न बनाकर भ्रम पैदा करती हैं। जेलीफिश और प्लैंकटन भी सुंदर नीली या हरी रोशनी छोड़ते हैं, जो समुद्र को रात में चमकदार बना देती है। यह प्राकृतिक रोशनी वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय है।

दोस्तों, समुद्री जीव में मैंटिस श्रिम अपनी अनोखी दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। मैंटिस श्रिम की आंखें बेहद जटिल होती हैं। जहां मनुष्य केवल 3 प्रकार के रंग रिसेप्टर्स से देखता है, वहीं यह जीव 12 से अधिक प्रकार के रिसेप्टर्स का उपयोग करता है। इससे यह पराबैंगनी और ध्रुवीकृत प्रकाश भी देख सकते हैं। इनकी आंखें अलग अलग दिशाओं में घूम सकती हैं, जिससे यह एक साथ कई दिशाओं को देख सकते हैं। यह क्षमता इससे शिकार पकड़ने और दुश्मनों से बचने में मदद करती है। इसके अलावा इसका प्रहार इतना तेज होता है कि पानी में छोटे शॉक वेव पैदा कर देते हैं।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं फास्ट रेडियो ब्रस्ट अंतरिक्ष से आने वाले रहस्यमय संकेत हैं। फास्ट रेडियो ब्रस्ट बेहद तेज और शक्तिशाली रेडियो तरंगे होती है जो केवल कुछ मिलीसेकंड तक ही रहती है। इनका स्रोत अरबों प्रकाश वर्ष दूर हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये न्यूट्रॉन स्टार या मैग्नेटार जैसे खगोलीय पिंडों से उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ फास्ट रेडियो ब्रस्ट बार बार दोहराते हैं जबकि कुछ केवल एक बार दिखाई देते हैं। इन संकेतों की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि एक क्षण में सूर्य जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो सकती है। अभी भी इनका सही कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। फास्ट रेडियो ब्रस्ट ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी संकेतों में से है जो हमें अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों को समझने की चुनौती देते हैं।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ कार्यक्रम ऐसा भी होता है।
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे है, आरंभ होता है चित्रपट संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज किया है फिल्म कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत के साथ। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में SS बिहारी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है OP नैयर ने।

शहनाई श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस फिल्म का गीत। आवाज है मोहम्मद रफी की। राजेंद्र किशन के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है रवि ने। और अब आइए मुकेश की आवाज में श्रोताओं सुनिए फिल्म छलिया का ये गीत। कमर जलालाबादी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

प्रेम पुजारी श्रोताओं, सुनिए इस फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार नीरज और संगीतकार हैं ST बर्मन।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार श्रोताओं, आपने सुना फिल्म पड़ोसन का ये गीत। गीतकार थे राजेंद्र किशन, आवाज़ थी किशोर कुमार की। और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अनामिका का ये गीत। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहन शक्ति परीक्षण PM&ET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव ओपन के लिए कुल पद है 28, अनारक्षित वर्ग के लिए 4 पद, 19 पद OBC वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है और विभागीय के लिए 3 पद है। अनारक्षित वर्ग के लिए 2 पद और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। ग्रुप सी में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 155, अनारक्षित वर्ग के लिए 66 पद, 65 पद OBC वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 9 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 पद, न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ग के लिए 7 पद, भूतपूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक के लिए 1 पद होगा। कांस्टेबल बैंड्समैन के लिए कुल पद है 4, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद, 2 पद OBC वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद रखा गया है। सफाई कर्मचारी एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 10, अनारक्षित वर्ग के लिए 5 पद, 4 पद OBC वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद रखा गया है। फॉलोवर कारपेंटर एग्जीक्यूटिव केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए होगा। कुल पद 1 जो OBC वर्ग के लिए ही रखा गया है। फॉलोवर कुक एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 13, अनारक्षित वर्ग के लिए 6 पद, 5 पद OBC वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1-1 पद है। फॉलोवर टेलर एग्जीक्यूटिव कुल पद है 1 जो अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। फॉलोवर बार्बर एग्जीक्यूटिव कुल पद 1 जो OBC वर्ग के लिए ही रखा गया है। फॉलोवर वाशरमैन एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 3, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद, OBC वर्ग के लिए 2 पद रखा गया है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा।

0: EWS, MSP, ESM भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़े। ऑनलाइन आवेदन 17 मई 2026 को रात 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।
1: ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है।
0: इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
2: और अब गौरव गान कार्यक्रम के तहत श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है, शर्तें लागू।

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर अप टू 80,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें

श्रोताओं, इसी के साथ गौरव गान कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में

0: ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के 4थे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश

0: कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से यह निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं

0: क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R. N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
2: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held meeting with the Chief Secretary, Home Secretary and other officials of the state at the PWD tent at Maidan. Meanwhile, renovation works are underway at the Writers Building in Kolkata for reshifting of the Secretariat of the State Government, which was shifted from this heritage building to the Navanno after Mamata Banerjee came to power in 2011. The new BJP government will work from the Writers Building, which is a heritage structure. In an important development today, special observer for the West Bengal for SIR, retired IAS officer Subroto Gupta has been appointed as the advisor to the Chief Minister of West Bengal and the 2017 batch IAS officer Shantanu Bala appointed as the personal secretary to the CM. It is learned that on 30th May, the newly elected MLAs of West Bengal will take oath at the assembly in Kolkata. Kollan Laha,

0: So we are trying to administer the scheme through the banking channels right now. If you see the working population below age 50, you can say 18 to 50, this population could be more than 50 crores. So clearly these numbers can be doubled.
1: Right.
0: A lot of younger generation, they open their accounts in these top private banks. This is the trend. So I think this is where a lot of focus has to happen. I don't see that great penetration is happening at that corner. That is the one side. It is not as much as public sector banks are doing. The gap is there that needs to be filled. This is the one. Second is the at employer level, it can be caught. That is a very good area of distribution. Employer level, all the employees can be covered because that is, again, a credible database will be available and they are 18 to 50, certainly it will be there.
1: Absolutely, Mr. Girdhar. Thank you so very much, Mr. Debashish Prusti, Ms. Sumit Kaur Kapoor, Mr. Girdhar and Ms. Girija Subramanian for having joined us and shared your views on this. Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR and our YouTube channel News on AIR Official.
2: आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से, मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करूं, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खांटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से

आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया

0: दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे, जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था, तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100 100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहाँ पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है

0: उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि भी फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती है, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाओ में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एक जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली केंद्र में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं। भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए, और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी, और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत

0: दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं, बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहां अलग अलग संस्कृतियां नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं प्रांजल।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
3: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ, तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, फिर और हौसला बढ़ाते रहे। मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती हूँ।
4: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है, तो मैं उसके ऊपर कार्यरत कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से, तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9-10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन्स को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
5: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
0: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
1: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
0: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
1: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
0: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
6: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
1: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद,
0: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
1: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
0: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
7: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
0: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
1: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल,
0: और मैं नेत्रा।

0: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए, पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम वल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santur under the guidance of the legendary santur maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
1: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसमोहिनी से

0: कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: ही इज अकम्पनीड ऑन तबला बाय उजित उदय कुमार। राजकुमार मजूमदार बिगिन्स हे संतूर रिसाइटल विद राग जन सम्मोहिनी प्रेजेंटिंग आलाप, जोड़ एंड झाला। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू रूपक ताल एंड मध्य लय। द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Raag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Raag Abhogi. Madhyalay and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: او كمبيوتر 2.
1: और जी साड़ा नाम है गुरप्रीत सिंह है जी। अब मैं तो जी रोज योग करता हूँ और एकदम फिट रहता हूँ।
2: मेरा नाम
3: Some people think you need to be flexible to do yoga, but actually, flexibility should be in our thoughts.
0: Now going to FM studio.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 20वीं तिथि तदनुसार 10 मई सन 2026। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:28:33 हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं।